मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के जेठ माह की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा।

0: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:55 हुए हैं। सुनिए खेत खलिहान कार्यक्रम में पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय है लौकी की खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: भाइयों नमस्कार। लौकी एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। इसकी खेती दो मौसम में की जा सकती है, एक तो गर्मा मौसम और दूसरा है जो वर्षा ऋतु के लिए। वर्षा ऋतु के लिए लौकी की रोपाई जो है जून जुलाई में आपको करनी होती है। लौकी की बहुत सी किस्में हैं, जिसमें पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी और पूसा नमीन प्रमुख हैं। अन्य कुछ जातियां भी हैं जिसमें पंजाब राउंड, पंजाब लॉन्ग, फैजाबाद सेलेक्शन, जूनागढ़ लॉन्ग टेंडर, कल्याणपुर लॉन्ग टेंडर प्रमुख हैं। भारतीय अनुसंधान उद्यान अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा विकसित कुछ किस्में हैं। अर्क बहार, यह किस्म गर्मी और वर्षा दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है। इसके लिए गर्म एवं तर जलवायु अच्छी होती है। लौकी की फसल पाले के प्रति असहनशील है। अधिक वर्षा एवं बादल वाले दिन इसमें बीमारी एवं कीड़ों के प्रकोप को बढ़ाते हैं। मौसम के अनुसार अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग किस्में उपयुक्त होती हैं। लौकी की खेती किसी भी प्रकार में की मिट्टी में जिसमें जल निकास अच्छा हो उगाई जा सकती है। इसकी खेती कुछ अम्लीय भूमि में भी की जा सकती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि वर्षा ऋतु के लिए इसकी रोपाई के समय जून जुलाई है। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर आप रखें। अधिक फैलने वाली किस्मों को 4 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। 4.5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होता है और एक स्थान पर 2 बीज 2.5 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। जहां तक खाद तथा उर्वरक का सवाल है, यह उथली जड़ वाली फसल होती है, इसलिए उर्वरक को टॉप ड्रेसिंग के रूप में देने से अधिक लाभ होता है। 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट की खाद को खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद 60 किलोग्राम नत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा, नेत्रजन की आधी मात्रा बोते समय तथा बची हुई नेत्रजन आधी मात्रा जड़ के पास टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। पौधे पर 2 पत्ती अथवा 4 पत्ती की अवस्था पर कुछ कृषि रसायनों का छिड़काव करना चाहिए, जिसमें हार्मोन्स प्रमुख है। इससे पैदावार अधिक होती है। गर्मी के मौसम में फसल को अधिक सिंचाई देने की आवश्यकता होती है या जब वर्षा नहीं हो तो ज़्यादा फसल में सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन जाड़े के मौसम में 10 से 15 दिनों बाद ही आप सिंचाई करें। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होती है। लौकी की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कुछ कीड़े भी इसमें लग जाते हैं जो कि इसको नुकसान करते हैं। उनमें कद्दू का लाल कीड़ा प्रमुख है, जो कि पौधा अंकुरण के समय से ही नुकसान करता है और फल मक्खी भी नुकसान करती है। तो कद्दू के कीड़ों के नियंत्रण के लिए सुरक्षित कीटनाशियों का छिड़काव समय पर करना चाहिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कद्दू के लाल कीड़ा को खाने वाले जो पक्षी हैं उन्हें खेत में आमंत्रित करें और वे स्वयं इन कीड़ों का भक्षण कर लेंगे। इसके लिए खेत में सुबह के समय मूढ़ी या चावल का भूंजा जो है वो खेत में आप डाल दें।
0: खेत खलिहान कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीनिवास सहाय से लौकी की खेती विषय पर जानकारी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6 बजने ही वाले हैं। अब हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, इसे हम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमार के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से

0: एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। 6:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन।
2: मनुष्यों के द्वारा निंदा को रस की मान्यता दी गई है। निंदा एक महारस है और इसमें डूबकर मन समाधि के समान आनंद प्राप्त करता है, ऐसी मान्यता है। कुछ काम न हो और ऐसा कोई मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। एक ही पल में न जाने कितने आंकड़े, तथ्य, आलोचना और सुझाव एकत्र हो जाते हैं, सोचकर हैरानी होती है। अगर किसी विषय पर रचनात्मक कार्य इतना किया जाता तो शायद एक शोध ग्रंथ बन जाता और रोचक भी होता। निंदा का सांकेतिक स्वरूप और लक्षण रुग्ण और अस्वस्थ मानसिकता का परिचायक है। निंदा कभी भी स्वस्थ मानसिकता का पर्याय नहीं हो सकती। सुझाव, प्रशंसा एवं सहयोग के उत्कृष्ट तत्व समाहित किए हुए जो विचार होते हैं उनकी तुलना में निंदा दूसरों को गिराने, अपमानित करने और पल पल असहयोग करने का दुर्भाव लिए हुए विचारों का एक समूह है। अगर हम प्रशंसा और निंदा के बीच आंकड़ों के खेल को देखें तो निंदा का पलड़ा भारी दिखेगा। प्रशंसा मन को सुकून देती है और अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, किंतु निंदा कांटों जैसी चुभती है, फिर भी हम इसे अपने जहन से चिपकाए रहते हैं। निंदा करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकृति होती है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मानता है। ऐसे व्यक्ति कभी खुश रहते नहीं और औरों की खुशी उनसे देखी नहीं जाती, वे तो बस लोगों की नुक्ताचीनी करने में लगे रहते हैं। निंदक एक तरह के सर्जक भी हैं, वो सृष्टि करते हैं। निंदक अपने विचारों के द्वारा कुछ नई नई अजीब अजीब किस्म की बातें बनाते हैं, विचारों की सर्जना होती है। निंदक केवल दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और नकारात्मक सोचते हैं। सोचते सोचते इनकी दृष्टि इतनी पैनी हो जाती है और इतने आंकड़े रखना शुरू कर देते हैं कि संबंधित व्यक्ति को भी अपने व्यक्तित्व की इतनी बारीकियों का पता न हो। निंदक सदैव नई नई सूचनाओं से भरे रहते हैं। फला व्यक्ति 1 घंटे के अंदर कहाँ कहाँ गया, क्या क्या उसने किया, उसने अतीत में क्या किया था, भविष्य में क्या करने की संभावना है, कई तरह की बातें आती हैं। और चाय की चुस्कियों के साथ अगर निंदा के रस का आनंद लिया जाए तो बड़ा ही मजा आता है। लेकिन योग और मनोविज्ञान के अनुसार ये एक ऐसी वृत्ति है जो निंदक को घोर पतन की ओर धकेलती है। ये ऐसा पतन है जहाँ केवल पीड़ा है, इससे उभरना बहुत कठिन है। निंदा करते करते व्यक्तित्व के अनेक गुण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। दूसरों की चुगली करने, उनके नकारात्मक पक्ष को सोचने, विचारने और बात करते रहने के कारण व्यक्ति के सोच और व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। कोई व्यक्ति निंदा क्यों करता है? वो निंदा इसीलिए करता है क्योंकि वो अपने आप में

0: घोर असंतुष्ट है। उसके भीतर जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाई है और ऐसी स्थिति जिसे वो चाहता है उसे मिल नहीं पाती। इसी अंतर की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए वो निंदा शुरू कर देता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब किसी के पास कोई रचनात्मक कार्य नहीं होता तो उसके पास अपने विचारों को दिशा देने के लिए भी कोई योजना नहीं होती। ऐसे में उसे खाली समय मिल जाता है और उस स्थिति में नकारात्मक विचारों का झंझावात उठने लगता है, निंदा शुरू हो जाती है। हम किसी की निंदा करके उसके मनोबल को गिराने का काम करते हैं। यह हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इससे कालांतर में अपना मनोबल भी गिरता है। इसीलिए किसी की निंदा न करके सदैव उसके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा से श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। निंदा करते रहने से कुंठा का भाव जागता है। समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, व्यक्ति और समाज दोनों का पतन होता है। सहयोग करने, प्रशंसा करने, दूसरों की गलतियां माफ करने आदि से समाज में श्रेष्ठ मूल्यों का विकास होता है। जब हम निंदा करते हैं तो ये मूल्य गिरते हैं और प्रशंसा करते हैं तो मूल्यों में वृद्धि होती है। अतः निंदक नहीं, श्रेष्ठ मूल्यों का प्रशंसक बनना चाहिए। हम इस संदर्भ में सोचें, विचार करें।
1: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे थे चिंतन मनन। निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए समूह स्वर में देश वंदना।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशभक्ति गीत वंदना कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में सुनिए अनूप जोलोटा के स्वर में सुंदर भजन।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही वंदना कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। 6:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता। विषय है कैंसर कारण लक्षण उपचार। भेंट वार्ताकार है डॉक्टर सचिन कुमार सिंह। भेंट करता है सचिन कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बातें कर रहे हैं कैंसर के बारे में और हम जानेंगे इसके कारण लक्षण और उपचार डॉक्टर सचिन कुमार सिंह से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, कैंसर क्या होता है?
2: कैंसर, इसको समझना होगा कि हमारा शरीर जो है वो अनेक कोशिकाओं से बना होता है
1: जी।
2: ये नियमित रूप से बढ़ते हैं और समय समय पर नए सेल्स से रिप्लेस होते हैं
1: जी, जी।
2: जब इस ग्रोथ पैटर्न में किसी भी तरह का बदलाव आ जाता है और इसका ग्रोथ जो है वो क्रोमोजोम के कंट्रोल से बाहर हो जाता है
1: जी,
2: तो ऐसे सेल का जो ग्रोथ होने लगता है उसको ही कैंसर कहते हैं। यह कैंसर शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, जैसे स्किन कैंसर, मुंह का कैंसर, सर का कैंसर, गले का कैंसर, छाती का कैंसर, पेट के आंत का कैंसर या पेट के किसी भी ग्रंथि भाग का कैंसर, हड्डी का कैंसर, ब्लड का कैंसर इत्यादि
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अब ये अहम सवाल उठता है कि कैंसर होने का कारण क्या है?
2: इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ कारण को हम बताना चाहेंगे श्रोतागण को
1: जी।
2: बिहार में जो मुख्य रूप से देखा जाता है वो है मुख का कैंसर
1: जी।
2: पुरुषों में पान तंबाकू गुटखा खाने का प्रचलन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मुख के अंदर की सतह में जो एक लेयर रहता है या जीभ में कहें वो लेयर हट जाता है, जिसके वजह से उसमें प्रारंभिक रूप से अल्सर होता है और फिर उसमें अनियंत्रित ग्रोथ देखा जाता है, कुछ गांठ देखा जाता है
1: जी।
2: चर्म कैंसर में देखा जाता है कि कुछ ऐसा रंग है जो स्किन को इरिटेट करता है
1: जी,
2: जिस वजह से फिर उसका जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो जाता है, तो वो भी एक कारण है
1: जी।
2: उसके बाद है कि पेट में कैंसर का होना, जैसे अब यहाँ गॉल ब्लैडर में कैंसर मुख्य कारण देखा जाता है कि गॉल ब्लैडर में यहाँ कैंसर काफी महिलाओं में पाया जाता है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि गॉल ब्लैडर में जैसे पथरी बन गया, अब वो काफी दिनों से उसको छोड़ दिया गया, उसका कोई इलाज नहीं किया गया, पहले तो वहाँ अल्सर हुआ, उसके बाद फिर उसमें ग्रोथ हुआ, वही आगे चल के कैंसर का रूप ले लेता है।
1: डॉक्टर साहब, रक्त कैंसर के होने का क्या कारण है?
2: इसका कुछ जेनेटिक लेवल पे कारण देखा गया है और इसमें जो ब्लड सेल्स का बनना और खत्म होना ये नॉर्मल सभी में ऐसा होना रहता है, जिसका कंट्रोल उसमें भी एबनॉर्मली जो ग्रोथ पैटर्न बढ़ने लगता है तो उसको ब्लड कैंसर कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, किसी स्वस्थ व्यक्ति को अगर कैंसर हो जाए या प्राथमिक रूप से हो रहा है तो कौन कौन से ऐसे लक्षण नजर आएंगे उसे या क्या क्या महसूस होंगे उसे, जिससे पता चले कि उससे कैंसर हो रहा है?
2: ओरल कैंसर में है कि सबसे पहले हमारे खाने के स्वाद में कुछ बदलाव आएगा, मुंह में अल्सर का होना जो जल्दी ठीक नहीं होना, बार बार अल्सर का होना, मुंह में उजला धब्बा टाइप से या लाल धब्बा वो बनना, शुरुआत में उसमें दर्द नहीं होता है, बाद में जब ये कैंसर का रूप लेके बढ़ने लगता है तो उसमें जलन और दर्द महसूस होता है, हल्का

0: देखा जाता है, या पेशाब के थैली में अगर कैंसर है तो पेशाब के साथ खून का जाना
1: जी
0: और पेट में कुछ गांठ का महसूस होना, लीवर कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है, किडनी में कैंसर होने से पेशाब में ब्लड आता है पेशाब के साथ, ये सब देखे जा सकते हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब, कहीं शरीर में अगर गांठ बन रहा है तो उसे भी कैंसर समझा जा सकता है?
0: हर समय कैंसर उसको नहीं समझना चाहिए,
1: जी
0: पैथोलॉजिस्ट से उस गांठ का जांच होता है, उसके बाद ये 100% कंफर्म होता है कि ये कैंसर वाला गांठ है या कुछ और है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, अब अंत में हम इसके उपचार के बारे में बातें करें, तो कैंसर का उपचार कैसे करना चाहिए?
0: इसमें समय का काफी महत्व है। अगर शुरुआत में पता चला काफी हद तक और कहीं कहीं तो 100% देखा गया है कि पूर्णतः ही उसका ट्रीटमेंट संभव है, और मैक्सिमम कंडीशन में जो है कैंसर का जो ग्रोथ है अबनॉर्मल, उसको काट के सर्जरी के द्वारा उसको हटा ही दिया जाता है।
2: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुना पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, विषय था कैंसर कारण लक्षण उपचार। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर सचिन कुमार सिंह, भेंटकर्ता थे सचिन कुमार। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडकर।

भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों के विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है, ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपनी उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं कि उनके कारण श्री राम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्री राम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों, ऐसी सीख की याचना भी करते हैं।

0: रामचरितमानस गान संपन्न हुआ। गायक थे सुरेश वाडकर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। कार्यक्रम विवरण इसमें सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 7 बजे आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनते हैं रसरंग, मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, कानून की बातें और कुछ फिल्मी गीत। 9:06 पर पेश किया जाएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। साथ ही आप अलग अलग समयों पर भी फिल्मी गीतों का आनंद ले पाएंगे, जैसे सुबह 10 बजे पुरानी फिल्मों से 11 से 12 बजे तक, चित्रपट से के तहत दोपहर 2:30 पर, शाम 5:30 पर और रजनीगंधा के तहत रात्रि 8 बजे। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर, कलाकार होंगी प्रतिभा सिन्हा। 10:30 पर आप सुन पाएंगे लोकगीत कार्यक्रम, कलाकार होंगे इंद्रदेव पासवान। 12 बजे सुनिए नारी लोक कार्यक्रम, प्रस्तुत करता है श्री पार्वती के। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरसंगम आप सुनेंगे 12:30 पर, कलाकार होंगे बलराम दास मिश्र। दिन के 1 बजे लोकरंग प्रस्तुत करेंगी रिंकू रानी। संताली कार्यक्रम जीवन झरना आप सुन पाएंगे 1:30 पर, प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 3 बजे, कलाकार होंगे डूंगर राम भट्ट और साथी। 3:20 पर आप सुनते हैं देशभक्ति गीत। शाम की शुरुआत होगी 5 बजे युवाणी कार्यक्रम के साथ, प्रस्तुत करता होंगे सौरभ कुमार। 6 बजे प्रस्तुत किया जाएगा ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम, प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन। लोकगीत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:10 पर, गायक होंगे केदार प्रसाद कुशवाहा। 7:52 पर प्रस्तुत किया जाएगा सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी, कलाकार होंगे अभय कुमार सुमन। 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से युवा भारती कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, कलाकार होंगी स्मिता मोकाशी।
1: दूसरे कमरे में जाइए, आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में।
0: कार्यक्रम विवरण में अभी आपने सुना हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमप्रबन्धने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम्, अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसांख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च संबोधयन् आसीत।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर
1: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः पञ्चदिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्स्यति। तेन सह नैके मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणः, व्यापारनेतारः, उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारत यात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल, डीजल, LPG इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मंत्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतम स्तरे अस्ति, यत् प्रतिदिनं LPG इत्यस्य 92,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि LPG वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य, तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता, यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं, पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं PM पोषणम्, उल्लासः, PM श्री इत्यादीनां प्रमुख योजनानां एकीकृत पद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीय शिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः, प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीयदिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् आसीत्। IPL क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादविन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडाङ्गणे न्यू चण्डीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7 पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे निर्णायकस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
0: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणक्कम और प्रणाम। साथियों, आज की इस खुशनुमा सुबह में मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त रिया। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में। तो दोस्तों, बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे भजन से।

शिव शंकर तुम कैलाश पति हो, शिव अनादि हैं, अनंत हैं, जिनके मस्तक सोहे चंद्रमा, गंग जटा के बीच, वही है शिव शंकर कैलाश पति। सुनिए ब्रह्मानंद के लिखे इस भजन को, स्वर है सुशील ठाकुर के।

मेरी रात में तू, मेरे कल में तू, मेरे आज में तू, जिधर देखूं बस तू ही तू। हे प्रभु राम, मेरी जिंदगी के हर पल में तू। सुनिए ये सुंदर भजन, रचना रामदास की है, स्वर है सुशील ठाकुर के।

एक झील है तुम्हारी नैनों में, ना चाह कर भी डूब जाती हूँ मैं। उसकी गहराई इतनी गहरी है कि कुछ और दिखाई भी नहीं देती है, और न देखूं सखी तो मैं चैन पाऊं भी ना। सुनिए अमीर खुसरो की ये रचित गीत को।

0: श्रोताओं, रसरंग में आप सुन रहे थे सुशील ठाकुर की आवाज को। अब आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुनना शुरू कर चुके हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, जिसे आप सुनते हैं हर रोज सुबह के 7 बजे से 7:55 तक। तो साथियों, वक्त हो चला है अपने अगले चंक की ओर बढ़ने का, और आज है शनिवार, जहां आज के दिन हम लाते हैं आपके लिए खास कानून की बातें। तो हमारा आज का विषय है सड़क दुर्घटनाएं और वर्तमान कानून। वार्ताकार हैं अनिल कुमार झा।
1: किसी भी देश, राष्ट्र या राज्य के विकास के लिए अन्य सुख सुविधाओं के अलावे यातायात के साधन तथा सड़कों की समुचित व्यवस्था तथा सुगम व्यवस्था होना अति आवश्यक होता है। सर्वांगीण विकास के लिए एक जगह से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे जगह का सड़क मार्ग से जुड़ा होना जरूरी है, ताकि सभी तरह के सभी जगह के उत्पादन किए जाने वाले वस्तुओं को दूसरे शहरों में पहुंचाया जा सके। सड़क मार्ग, जल मार्ग तथा वायु मार्ग में से सड़क मार्ग सबसे सुरक्षित, सुगम तथा सस्ता मार्ग है। प्रत्येक मार्ग की तरह सड़क मार्ग में भी विभिन्न तरह की समस्याएं होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए विभिन्न तरह के कानून बनाए गए हैं। चालन परिचालन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न विधि व्यवस्था के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले को सजा व दंडित करने का व्यवस्था किया गया है। सड़क मार्ग से पैदल, साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, मोटरसाइकिल एवं विभिन्न तरह के कार एवं मोटर वाहन गाड़ियां द्वारा हम लोग यात्रा करते हैं तथा एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं। आवागमन के कारण आजकल पहले की अपेक्षा सड़क पर आदमियों एवं यातायात के साधनों का भी काफी भारी संख्या में चालन परिचालन एवं पलायन बढ़ गया है। किसी भी एक व्यक्ति की गलती से, चूक या जानबूझकर किए गए कार्य की वजह से न केवल इस तरह के कार्य करने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंचता है, बल्कि उसके संपर्क में या उसके आसपास से गुजरने वाले कई व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षति एवं अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ता है। हमारे देश में अन्य देशों की तरह ही पैदल चलने वालों के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए मोटर कार, मोटर वाहनों के लिए एवं अग्निशामक यान, एम्बुलेंस आदि के चालन व परिचालन के लिए अलग अलग तरीके के नियम एवं कानून के माध्यम से दिशा निर्देश तथा उल्लंघन करने वाले पर दंड का प्रावधान स्पष्ट रूप से किया गया है। देश दुनिया के विकास के साथ ही साथ वैज्ञानिक तरीके से होने वाले विकास में घटनाएं एवं दुर्घटनाएं में भी काफी वृद्धि हुई है। इन दुर्घटनाओं को व्यक्तियों के द्वारा सतर्कतापूर्ण तरीके से पालन करने पर रोका जा सकता है। हम लोगों को एक अच्छा नागरिक, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति तथा सामाजिक सदस्य होने के नाते अपने राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए तथा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्य रूप से नियमों, अधिनियमों, अनुच्छेदों तथा कानूनों को जानना चाहिए। साधारणतया हम लोग जानते हैं कि हमें सड़क पर बाईं तरफ से चलना चाहिए, और अगर कोई तेज गति का वाहन पीछे से आ रहा हो तो उसे आगे जाने देने के लिए दाहिने तरफ जगह देना चाहिए। किसी भी मोटर गाड़ी को किस तरह चलाना चाहिए तथा अग्निशामक गाड़ी एवं एम्बुलेंस गाड़ी को आगे बढ़ने देने के लिए तुरंत जगह देना चाहिए। यही कारण है कि प्रत्येक वाहन चलाने के लिए लाइसेंस यानी अनुज्ञप्ति दिया जाता है, और इसके लिए पैमाना के तहत परीक्षा लिया जाता है। हमें यह जानना आवश्यक है कि ट्रैफिक के नियम क्या है। मोटरयान अधिनियम 1988, सड़क के नियम विनियम 1989 क्या है, केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989। हमारे देश में प्रत्येक नागरिक तथा प्रत्येक व्यक्ति एवं सभी के सम्मानों की सुरक्षा का गारंटी दिया गया है, और इसलिए अगर उन्हें किसी भी तरह की क्षति या हानि होती है तो दावा करने पर मुआवजा की राशि न्यायालय की प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाता है। स्पष्ट लिखित कानून है कि होने वाले दुर्घटना में अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है या अंग भंग होता है या किसी वस्तु की क्षति होती है तो दावेदार कौन होगा, किसके खिलाफ में दावा किया जा सकता है तथा दावा कहां एवं किस न्यायालय में किया जा सकता है। सड़क दुर्घटना में होने वाले क्षति का दावा प्राप्त करने के लिए हमें एक प्रक्रियात्मक विधि का पालन करना पड़ता है। एक ट्रक चालक जिसके डाला के ऊपर पत्थर का टुकड़ा यानी बोल्डर लोड था, वह राज्य की सड़क से राष्ट्रीय राजमार्ग उच्च पथ पर जाने के क्रम में मोड़ पर एक कार से टकरा गया, जिसमें कार क्षतिग्रस्त हो गया और उसके ड्राइवर की मृत्यु हो गई। अन्य कार सवार एक व्यक्ति को काफी गंभीर चोटें आई। कार चालक तथा ट्रक चालक दोनों ही के पास ड्राइविंग लाइसेंस अप टू डेट था। दोनों ही गाड़ी का बीमा कंपनी से इंश्योरेंस यानी बीमा कराया गया था। इस तरह के दुर्घटना होने पर पुलिस पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर मामले का जांच पड़ताल किया गया। अनुसंधान करने पर मामला स्पष्ट हुआ कि एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के क्रम में ट्रक को जैसे ही दाहिने तरफ मुड़ा गया, उसी क्रम में अचानक कार के आ जाने की वजह से उसमें टक्कर लग गई और इस तरह की दुर्घटना हो गई। कार ड्राइवर जिसकी मृत्यु हुई थी उसके तरफ से उसकी पत्नी तथा जिस व्यक्ति को गंभीर चोटें आई थी उन दोनों के द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाह दावा न्यायाधिकरण के न्यायालय में दावा किया गया। इस दावे में ट्रक ड्राइवर एवं ट्रक मालिक द्वारा बीमा कंपनी को विपक्षी पक्षकार बनाया गया। न्यायालय के द्वारा सभी तरह के साक्ष्य लेने के बाद बीमा कंपनी के खिलाफ में मृतक के परिजन को 5,00,000 रुपये तक गंभीर रूप से क्षति पहुंचने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपये का मुआवजा राशि देने का निर्णय दिया गया और पीड़ित पक्षकार को उसका लाभ मिला। अगर किसी पैदल यात्री को भी इस तरह से चोटें आती है या उसकी मृत्यु होती है तो उसको भी इसी तरह का लाभ न्यायालय से मिल सकता है। समझने वाली बात यह है कि अगर उक्त ट्रक बीमित नहीं होता तो ट्रक का मालिक उक्त राशि का देनदार होता। अगर कार बीमित नहीं होता तो उसे उक्त राशि न्यायालय से प्राप्त नहीं होता। इस तरह से स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति लेनी है, जिसके द्वारा या उसके मृतक के द्वारा किसी तरह से कानून का उल्लंघन या भूल चूक नहीं होना चाहिए, जिस व्यक्ति के विरुद्ध या कंपनी के विरुद्ध दावा किया जाता है उसका व्यक्तिगत गलती या बीमा कंपनी से बीमित होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सड़क किनारे बस स्टॉप पर सामान रखने वाले जगह पर सामान रखता है और किसी गाड़ी चालक द्वारा लापरवाही से चलाने के चलते उस सामान को पहिया के द्वारा कुचल दिया जाता है तो उस क्षति के लिए गाड़ी चालक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा और उसे क्षतिपूर्ति देना होगा। इस तरह से हमारे देश में हर एक व्यक्ति तथा संपत्ति को कानून के द्वारा सुरक्षित रखा गया है। सड़क दुर्घटना होने पर दावा न्यायाधिकरण के अलावे आपराधिक न्यायालय के द्वारा भी मामला का सुनवाई किया जाता है। दोनों ही न्यायालय के आदेश का पालन विपक्षी को करना पड़ता है। दावा करने वालों को मोटरयान अधिनियम 1988 के धारा 110 के तहत निर्धारित समय सीमा 6 महीना के अंदर दावा किया जाना चाहिए। विलंब से किए गए दावे को स्वीकार करने का समुचित तार्किक कारण होना चाहिए, जिसे कि न्यायाधीश के विवेक के अनुसार ही लिया जा सकता है। धारा 140 के तहत मृतक के परिजन को तत्काल 50,000 रुपये विपक्षी से न्यायालय की प्रक्रिया के आधार पर मिलता है। अगर प्रथम दृष्टया दावाकर्ता द्वारा जमा किए गए कागजात सही एवं समुचित हो तब भारतीय दंड संहिता उक्त ड्राइवर के विरुद्ध में जिसके द्वारा कि उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चालन करने के कारण दुर्घटना होती है उसको सबक सिखाने, दंड देने, सजा देने हेतु विभिन्न धाराओं में प्रावधान किया गया है। उन धाराओं में से मुख्य धारा भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 279-304 है। अगर किसी व्यक्ति को क्षति या शारीरिक क्षति मिलता है तो उक्त ड्राइवर को 6 महीने तक की सजा हो सकती है। अगर ड्राइवर की गलती के कारण से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ड्राइवर को 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस तरह से शारीरिक सजा के माध्यम से दंड देने का प्रावधान कर ड्राइवर द्वारा उतालेपन एवं उपेक्षा द्वारा गाड़ी के परिचालन करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया है। शराब या किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, ना नशे की हालत में गाड़ी चलाना चाहिए और ना ही किसी को चलाने देना चाहिए। इस तरह से हम 25% सड़क दुर्घटना को रोक सकते हैं। जख्मी व्यक्ति या मृतक व्यक्ति के आमदनी, पद प्रतिष्ठा तथा उसके दायित्व से होने वाले क्षति को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण द्वारा दावेदार को अलग अलग तरीका का क्षतिपूर्ति प्राप्त होता है। एक बात हमें अवश्य समझनी चाहिए कि कानून चाहे जितनी भी हो, क्षतिपूर्ति भले ही नियमानुसार मिल जाए परंतु शारीरिक अपंगता दूर नहीं हो सकता और ना ही जान प्राण वापस लाया जा सकता है। इसलिए व्यक्ति की महत्ता को सर्वोपरि मानते हुए हमें न्यायानुकूल व्यवहार करते हुए काफी सतर्क सावधानी पूर्वक जान प्राण की रक्षार्थ दुर्घटना को रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसी में हमारी और हमारे राष्ट्र की भलाई है।
0: कानून की बातें में आपने सुना अनिल कुमार झा से वार्ता। विषय था सड़क दुर्घटनाएं और वर्तमान कानून। हमें उम्मीद है श्रोताओं, इस वार्ता के जरिए आपने भी यह जाना कि सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित कितने महत्वपूर्ण कानून हैं जिसकी आवश्यकता आए दिन हमें पड़ती रहती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और जल्दी वापस लौटते हैं।

वेलकम बैक साथियों, आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। श्रोताओं, आइए अब आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन की सूचना नाम और नंबर के साथ। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, दोस्तों ये ऑन टाइम मिलने वाली है। इसका सही समय है सुबह 7:50। 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस, ये भी अपने नियत समय 7:45 पर भागलपुर आएगी। 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये भी ऑन टाइम मिलने वाली है श्रोताओं। इसका सही समय है 8:15। ब्रह्मपुत्र मेल, जिसकी ट्रेन संख्या है 15658, ये अपने नियत समय 8:05 से डीले चल रही है 27। 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर, ये अपने सही समय 8:37 से डीले चल रही है 8। 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, ये ऑन टाइम मिलने वाली है साथियों। उसका सही समय है सुबह 9:00। 63431 साहिबगंज जमालपुर मेमू, ये भी ऑन टाइम मिलने वाली है साथियों। उसका सही समय है 9:15। 13409 मालदा की ओर इंटरसिटी, ये अपने नियत समय 9:35 पर भागलपुर आएगी। 13229 गोड्डा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, जो कि साप्ताहिक की ट्रेन है, ये आपको ऑन टाइम मिलने वाली है साथियों। इसका सही समय है 10:15। 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये अपने नियत समय सुबह 11:55 पर भागलपुर से आगे के स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी। तो ये थी भागलपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन की सूचना NTS पर आधारित। तो श्रोताओं, ट्रेन की सफर की शुरुआत करते हैं यहीं हम विवरण के साथ। तो आइए एक खुशनुमा माहौल को और खुशनुमा बनाते हैं इस गीत के साथ।

0: हमें उम्मीद है श्रोताओं ये गीत आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आइए हम भी चलते चलते आपको बता देते हैं कि आज मौसम का क्या हाल रहने वाला है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अवधि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है एवं इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% तथा दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। तो श्रोताओं मौसम का तो हाल कुछ यूं सा रहने वाला है, तो आइए मौसम का आनंद हम इस गीत के साथ लेते हैं।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री One, let's start the fun!

श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ ये गीत आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आनंद भी लिए होंगे आप इस गीत के साथ। तो श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं आज के इतिहास की क्या कुछ खास महत्वपूर्ण घटनाएं घटित है। तो बात करें 1987 की, तो वर्ष 1987 में आज ही के दिन गोवा को भारत के राज्य का दर्जा मिला। गोवा भारत का 26वां राज्य बना। वहीं बात करें वर्ष 1996 की, तो आज ही का दिन था जब 6 वर्षीय बालक गेधुन चोकी नाया को नया पंचेन लामा

0: चुना गया था। वहीं वर्ष 1998 में पाकिस्तान द्वारा एक और छठा परमाणु परीक्षण किया गया था। वर्ष 2007 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर 107 शांति रक्षक पुरस्कृत किया गया था। वहीं बात करें वर्ष 2012 की, तो आज ही का दिन था जब विश्वनाथन आनंद पांचवी बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के इतिहास की कुछ खास महत्वपूर्ण बातें। हमारी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी वापस लौटते हैं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ाऊं।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे?
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
6: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: वेलकम बैक साथियों, आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। श्रोताओं, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस। आज है 30 मई और इस दिन हम मनाते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस। इसी तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मारतंड का प्रकाशन आरंभ किया था। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने ही की थी। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जिसका श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। आज के समय में समाचार पत्र का एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है और मीडिया ने आज सारे विश्व में अपनी एक खास पहचान बना ली है। हिंदी पत्रकारिता ने भी एक लंबा सफर तय किया। जब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मारतंड को रूप दिया, तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि हिंदी पत्रकारिता इतना लंबा सफर तय करेगी। और उन्होंने काफी दिनों तक उदंत मारतंड को चलाया और पत्रकारिता करते रहे। वर्तमान में बहुत से लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और ये एक बड़ा कारोबार बन गया है। जो हिंदी में क ख ग भी नहीं जानते, वो हिंदी में पत्रकारिता को बनाए रख रहे हैं। 200 वर्षों में हिंदी अखबारों एवं समाचार पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी तेजी आई है, साक्षरता बढ़ी है और इसके साथ ही विज्ञापन भी बढ़े हैं। हिंदी के पाठक अपने अखबारों का पूरा समर्थन भी देते हैं। महंगा, कम पन्ने वाला और खराब कागज वाला अखबार भी वे खरीदते थे। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई और इसका श्रेय, जैसा कि मैंने बताया, कि राजा राम मोहन राय जी को जाता है और उन्होंने ही सबसे पहले

पेयर्स को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा, भारतीयों के सामाजिक धार्मिक राजनीतिक आर्थिक हितों का समर्थन किया, समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार किए और अपने पत्रों के जरिए जनता में जागरूकता पैदा की। बंगाल गजट भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र है और इस समाचार पत्र के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने मीरातुल संवाद कौमुदी, बंगाल हेराल्ड पत्र भी निकाले और लोगों में चेतना फैलाई। 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने शुक्ल के संपादन में निकलने वाले उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। तो श्रोताओं, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हम आप सभी को हिंदी अखबारों को श्रेय पहुंचाना चाहते हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की। तो आइए इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब आइए जान लेते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या कुछ खास है। राजस्थान रॉयल्स 7 विकेट से हारा, 215 रनों से सबसे बड़ा रन चेज करके गुजरात फाइनल में। आसमान से बरसी आफत, तेज आंधी पानी ठनका से 17 की मौत। आज भी भागलपुर में भारी बारिश की चेतावनी। सीबीएसई ओएसएम अगले साल से आंसर शीट भी डिजी लॉकर में आएगी। भागलपुर में गरज के साथ 52.3 mm बारिश। अब फाइनल में होंगे सुदर्शन। 5 सीजन में तीसरी बार फाइनल खेलेगी गुजरात टाइटंस, कल बेंगलुरु में होगा सामना। महिला टी20 में इंग्लैंड पर दूसरी बड़ी जीत। फ्रेंच ओपन तीसरी सीट स्वेतेक ने लेनेट की सीधे सेट में हराया, 8वीं बार प्री क्वार्टर में। मेसी रिकॉर्ड 6ठी बार फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगे। समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज बस इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 8 बजने ही वाले हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज और उर्दू समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों

0: और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
3: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त

0: के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a five-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch seven medals including four gold on day two. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by seven wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
4: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
3: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region. He said Indian embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals.
5: Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines. They are also in close touch with the local governments. Advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns.
3: Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, informed that the merchant vessel Nissos Keros, a crude oil tanker, has safely transited the Strait of Hormuz and is expected to arrive in Visakhapatnam on the 3rd of June. He said the vessel is carrying around 270,000 metric tons of crude oil.
6: A merchant vessel, Nissos Keros, a Marshall Island flag crude oil tanker, safely transited Strait of Hormuz on the night of 25th-26th and is bound to arrive at Visakhapatnam on 3rd June. This merchant vessel is carrying crude oil, approximately 270,000 metric tons. It has all foreign crew members and is a Marshall Island flag vessel. All Indian seafarers in the region are safe.
3: The Ministry of Health and Family Welfare has released the National Family Health Survey 6 with the data reflecting India's accelerated progress in maternal and child health, nutrition and financial protection. The survey released yesterday highlights that institutional deliveries increased from 88.6% to 90.6%. We have a detailed report.
7: The National Family Health Survey 6 showed 95.9% of pregnant women received antenatal care, while mothers receiving antenatal care in the first trimester increased from 70% to 76.2%. It also said that India's total fertility rate, TFR, remains at 2 and vaccines received by children aged from 12 to 23 months remains consistently high above 96%. The Health Ministry said that these improvements underscore the continued impact of national family planning programs including Mission Parivar Vikas. The survey also records continued advancement in women's digital inclusion and financial empowerment. It said that women who had ever used the internet nearly doubled from 33.3% to 64.3%. The survey said that Ayushman Bharat, PMJAY and expanded health protection initiatives strengthen financial security in healthcare. With Akshit, Swati Rakheja, Akashwani News, Delhi.
3: President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, will arrive at Bodh Gaya in Bihar this morning on a five-day visit to India. He will be accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This

0: करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
2: दौरे के हिस्से के तौर पर म्यांमार के सदर 2 जून को मुंबई जाएंगे, जिसका मकसद ताजिरों और सनअतकारों से बातचीत करना और मौकों का दौरा करना है। हमारे नामनिगार ने बताया कि म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम मशरक पर खसूसी तवज्जो और महासागर पॉलिसियों का कायल है। म्यांमार के सदर के भारत के सरकारी दौरे से उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
3: कर्नाटक के सुबुकदोष हो रहे वजीर आला सिद्धारमैया ने नया रहनुमा मुंतखब करने के लिए आज सपहर 4 बजे कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है। इस दौरान डीके शिवकुमार वजीर आला सिद्धारमैया की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने जनाब सिद्धारमैया का इस्तीफा कबूल कर लिया है और नए रहनुमा के चुने जाने तक उनसे निगरान वजीर आला के तौर पर फरज अंजाम देने को कहा है। इस दौरान कांग्रेस के सभी 136 अराकीन असेंबली को कानून साज पार्टी मीटिंग में शरीक होने से मुतालिक सर्कुलर जारी किया गया है। पंजाब मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में बरसर इख्तदार आम आदमी पार्टी ने 1977 में से 958 वार्ड्स में जीत दर्ज की है। रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 19 नगर पंचायतों में ये इंतखाबात हुए थे। कांग्रेस ने 397, श्रोमणी अकाली दल ने 192 और बीजेपी ने 172 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। बीएसपी महज 7 वार्ड्स में ही कामयाबी हासिल कर सकी। दिलचस्प बात यह है कि आज़ाद उम्मीदवार 251 वार्ड्स में जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 26 मई को पंजाब के शहरी मकामी बल्दियाती इदारों में हुए इंतखाबात में कुल 7,554 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रियासत गोवा आज अपना यौम तासीस मना रही है। आज ही के दिन साल 1987 में गोवा को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया गया था और इस तरह यह भारतीय यूनियन की 25वीं रियासत बन गई थी। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन पणजी की कला अकादमी में गोवा यौम तासीस तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये मौका गोवा की आज़ादी से लेकर इंसानी तरक्की और म्यारे ज़िंदगी के मामले में भारत की सरकर्दा रियासत बनने तक के गोवा के सफ़र की अक्कासी करता है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान आज रियासत की गुज़श्ता 4 दहाई के दौरान जो तब्दीली हुई है उसे नुमाया किया जाएगा। 1961 में पुर्तगाली तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के बाद गोवा दमन और दीव के साथ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बन गया था। 1967 में फैसला कुन लम्हा तब आया जब गोवा के लोगों ने गोवा की मुनफरिद शनाख्त को बरकरार रखने के लिए तारीखी ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया। साल 1987 में कोंकणी जबान को सरकारी जबान का दर्जा मिलने से
5: हासिल की है। बीएसपी महज 7 वार्ड्स में ही कामयाबी हासिल कर सकी। दिलचस्प बात यह है कि आज़ाद उम्मीदवार 251 वार्ड्स में जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 26 मई को पंजाब के शहरी मकामी बल्दियाती इदारों में हुए इंतखाबात में कुल 7,554 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रियासत गोवा आज अपना यौम तासीस मना रही है। आज ही के दिन साल 1987 में गोवा को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया गया था और इस तरह ये भारतीय यूनियन की 25वीं रियासत बन गई थी। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन पणजी की कला अकादमी में गोवा यौम तासीस तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये मौका गोवा की आज़ादी से लेकर इंसानी तरक्की और म्यारे ज़िंदगी के मामले में भारत की सरकर्दा रियासत बनने तक के गोवा के सफ़र की अक्कासी करता है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान आज रियासत की गुज़श्ता 4 दहाई के दौरान जो तब्दीली हुई है उसे नुमाया किया जाएगा। 1961 में पुर्तगाली तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के बाद गोवा दमन और दीव के साथ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बन गया था। 1967 में फैसला कुन लम्हा तब आया जब गोवा के लोगों ने गोवा की मुनफरिद शनाख्त को बरकरार रखने के लिए तारीखी ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया। साल 1987 में कोंकणी जबान को सरकारी जबान का दर्जा मिलने से गोवा के रियासत बनने की राह हमवार हुई और उसी साल 30 मई को गोवा भारत की 25वीं रियासत बन गई। गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान नायब सदर सीपी राधाकृष्णन आज CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का दौरा करेंगे, जहां वो तहकीक और

0: जाती जदगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज सुबह बिहार के बौद्धगया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तम्बों समेत 7 तम्बे जीते हैं। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। साथ ही खबरों का बुलेटिन।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहाँ चलती है, इधर तो
4: इधर आइए, इधर
5: इधर।
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
6: शुभवाणी,
5: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आंधी, बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलांग आज 5 दिवसीय भारत दौरे के क्रम में बोधगया आ रहे हैं। महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राज्य सरकार ने सरकारी बसों के किराए में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की। बढ़ा हुआ किराया 1 जून से होगा प्रभावी। और प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की होगी जांच। 1 जुलाई से शुरू होगा विशेष अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आंधी, बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। हालांकि सरकार ने केवल 7 लोगों की ही मौत की पुष्टि की है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि गया में 3, नवादा, पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद में 2-2 लोगों की मौत हुई है। वहीं सारण, खगड़िया, रोहतास और भागलपुर में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन हादसों पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी बारिश के कारण सब्जी, लीची और आम की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई। गया और सिवान में ट्रेनों का परिचालन भी बाधित हुआ। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सिवान के सिसवन में सबसे अधिक 135.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं गोपालगंज के खोड़े में 90.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बीच विभाग ने आज भी राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है।
1: दिनांक 30 मई दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के अनेक स्थानों, उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों के कुछ स्थानों में वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गरज बिजली गिरने की संभावना है। बांका और भागलपुर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों की क्षति के सर्वे का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को समुचित राहत दी जा सके। प्रदेश में जून महीने के दौरान सामान्य से कम बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से जारी मॉनसून बुलेटिन में कहा गया है कि जून से सितंबर तक सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य में मॉनसून के आगमन में भी 1 सप्ताह का विलंब हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलांग आज अपने 5 दिवसीय भारत दौरे के क्रम में बोधगया आ रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गयाजी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलांग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद रहेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राज्य सरकार ने सरकारी बसों के किराए में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की है। बढ़ा हुआ किराया 1 जून से प्रभावी होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
3: परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 50 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 15%, 100 किलोमीटर तक के लिए 14% और 150 किलोमीटर तक के लिए बस किराए में 13% की

0: योग शिविर में प्राप्त आवेदनों के निपटारे के लिए सहयोग कोषांग का गठन किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के अपर सचिव अखिलेश कुमार सिंह को नोडल पदाधिकारी और कोषांग प्रभारी बनाया गया है। सहयोग शिविर में आने वाले आवेदनों की मॉनिटरिंग, समन्वय और शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू की गई है। राज्य सरकार के कर्मियों के कैशलेस चिकित्सा योजना से जुड़ने पर उनके चिकित्सा भत्ता में कटौती होगी। ऐसे कर्मियों को प्रतिमाह 10% ही चिकित्सा भत्ता मिलेगा। वहीं पेंशन भोगियों को इस योजना से जुड़ने पर 1 माह की पेंशन राशि एक मुश्त जमा करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार राज्य स्वास्थ्य योजना की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश वित्त विभाग के परामर्श के बाद जारी की जाएगी। दरभंगा के तोनार में मखाना प्रसंस्करण इकाई की स्थापना होगी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की परियोजना समाशोधन समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 27,44,00,000 रुपए की लागत आएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। राज्य सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की जांच कराने का फैसला किया है। यह जांच अभियान 1 जुलाई से शुरू होगा। 1 महीने तक चलने वाले अभियान के तहत विद्यालयों में आधारभूत संरचना, शिक्षकों की उपलब्धता, नामांकन, छात्र सुविधाओं और अन्य निर्धारित मानकों की जांच की जाएगी। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम और बच्चों की मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा नियमावली के अनुपालन की भी जांच की जाएगी। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह कुंजियाल ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र भेजा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने कहा है कि विद्यार्थी किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली परामर्श हेल्पलाइन 1800118004 पर संपर्क कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विधानसभा की कई समितियों का पुनर्गठन किया है। पूर्व मंत्री मंगल पांडे को प्राक्कलन समिति का सभापति बनाया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति तथा कृषि उद्योग विकास समिति का सभापति बनाया गया है। वहीं अमनौर विधायक कृष्ण कुमार मंटू को आचार समिति का सभापति मनोनीत किया गया है। तेलंगाना विधानमंडल के पदाधिकारियों का दल अध्ययन दौरे पर बिहार विधानसभा और विधान परिषद पहुंचा। दल ने दोनों सदनों की कार्य प्रणाली समझने के लिए विधानसभा और विधान परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही इस दल ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। किशनगंज के पेठिया प्रखंड स्थित मिर्जापुर गांव से एक युवक को हिरासत में लेकर उससे लंबी पूछताछ भी की गई। हालांकि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। पटना के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के टेका बिका सिरसी ताल में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से निर्मित अर्धनिर्मित

0: हथियार और हथियार बनाने के उपकरणों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना क्षेत्र के नाका नंबर 6 के पास पुलिस ने लगभग 25 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिले के बरपिका से 3 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों से रुपए ठगते थे। पहाड़ी इलाकों में पुलिस और एसएसबी ने सर्च अभियान चलाकर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। शिवहर की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी बिट्टू कुमार को 10 वर्ष कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने विक्रमशिला एक्सप्रेस से 4 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया है। सभी बच्चों की उम्र 11 से 15 वर्ष के बीच बताई जाती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मोतिहारी शाखा द्वारा 6 जून को मेगा कृषि ऋण आउटरीच कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरित किए जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच कल अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया, राज्य के 8 जिलों में 18 की मौत, कई झुलसे। प्रभात खबर ने लिखा है, बिहार में आंधी पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगह पेड़ गिरे, फसलों को भी नुकसान। दैनिक जागरण लिखता है, बस का सफर हुआ महंगा, 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ा किराया। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राष्ट्रपति से मिले मुख्यमंत्री, तिलका मांझी की प्रतिमा का अनावरण करने का आग्रह किया। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस जारी। आज अखबार ने लिखा है, वैभव पर भारी पड़ा गिल, गुजरात तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आंधी बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत। म्यांमार के राष्ट्रपति यो मिन आंग हलाइन आज 5 दिवसीय भारत दौरे के क्रम में बोधगया आ रहे हैं। महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राज्य सरकार ने सरकारी बसों के किराए में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की। बढ़ा हुआ किराया 1 जून से होगा प्रभावी। और प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की होगी जांच, 1 जुलाई से शुरू होगा विशेष अभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भट

0: रखना अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
0: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभवाणी,
0: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र। 9:06 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। साथियों, कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है बादल फिल्म से। आवाज़ है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की।

0: Akashvani at 90.
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इस संदेश के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने यहीं संपन्न हुआ। प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज सुगम संगीत के गायक कलाकार हैं प्रतिभा सिन्हा। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनिए डॉक्टर शांति जैन का लिखा ये गीत।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला

0: ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 870-001-4242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।

सुगम संगीत संपन्न हुआ। आज सुगम संगीत में आपने सुना प्रतिभा सिन्हा के गाए गीत और भजन। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 10 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम की पहली पेशकश में आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाज में ये गीत फिल्म अपना देश से।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। अब सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाज में एक गीत फिल्म दाता से।

श्रोताओं अब सुनिए दो दिलों की दास्तान फिल्म से यह गीत, जिसे स्वर से सजाया है सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ने।

0: आज शबनम शरा।
1: कार्यक्रम की आखिरी पेशकश में सुनी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में ये गीत गुलामी फिल्म से।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम। आज लोकगीत के गायक कलाकार हैं इंद्रदेव पासवान। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनिए लोक भजन।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: आकाशवाणी भागलपुर से आप सुन रहे हैं लोकगीत।

छुएला लीलर बारा ताही दिन

बम्बई उड़ीसा बहिन मध्य परदेश गे, बम्बई उड़ीसा बहिन मध्य परदेश गे, केरल मद्रास आरु आंध्र परदेश गे, केरल मद्रास

लोकगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज लोकगीत के गायक कलाकार थे इंद्रदेव पासवान। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अब अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद।

मीडियम वेव 205.6 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 11 बजे हैं। नीचे सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म

लीजिए आप सुनिए भूपेंद्र और सुलक्षणा पंडित के युगल आवाजों में फिल्म गृह प्रवेश का ये गीत।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर
2: 870-001-4242
3: लीजिए अब सुनिए फिल्म सितारा का गीत जिसे गाया है भूपिंदर और लता मंगेशकर ने

0: घरौंदा फिल्म का गीत सुनिए भूपेंद्र सिंह और रूना लैला की आवाज में।
1: कुछ परछाइयां, कुछ चाहत के सजदे, कुछ बहते बादलों पर रखी उम्मीदें, जिंदगी थकने लगी है और ये जिंदगी का जुड़वां उसकी उंगली पकड़े शहर की नंगी सड़कों पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: लीजिए अब सुनिए फिल्म सिंदूर का गीत, आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की।

0: लीजिए अब सुनिए फिल्म आंधी का गीत, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।
1: ऐसा लगता है कि वो शिकवा नहीं,
2: कम से कम ये इमारत

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: आकाशवाणी एट 90।
1: लीजिए सुनिए फिल्म तेरे मेरे सपने का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: कार्यक्रम के अंत में आइए अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अभिनेत्री का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।
1: हंसो मत, बोलो।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, प्रसारण आपके सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक।

नमस्कार बहनों, नारी लोग के आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी सहेली मुनमुन। बहनों, हमारा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हमारा स्वास्थ्य ही खराब हो तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। कई बार हम खुद ही अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह होते हैं। हमारी बुरी आदतों के कारण हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तंबाकू सेवन ऐसी ही आदत है। वर्ष भर में इसके कारण लगभग 80 लाख जाने काल के गाल में समा जाती है। तंबाकू को ना कहना जीवन को हाँ कहना है। तंबाकू सिर्फ धूम्रपान करने वालों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये मानव शरीर के लगभग प्रत्येक अंग को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान शुरू करने के कुछ मिनटों के भीतर अल्पकालिक प्रभाव दिखने लगते हैं, जैसे हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और रक्त में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड लेने लगती है। इसके दीर्घकालिक परिणाम कहीं अधिक गंभीर होते हैं। फेफड़ों का कैंसर तंबाकू से होने वाली सबसे गंभीर बीमारी है। हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। लंबे समय तक तंबाकू का सेवन मोतियाबिंद और उम्र से संबंधित मैकुलर डिस्ट्रेशन के खतरे को काफी हद तक बढ़ा देता है, जो वयस्कों में दृष्टि हानि के प्रमुख कारण हैं। तंबाकू रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, जिससे शरीर संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, जिसमें तपेदिक जैसी बीमारी भी शामिल है। पुरुषों में तंबाकू सेवन से प्रजनन संबंधी खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। बहनों, प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले जानलेवा नुकसान के प्रति जागरूक किया जा सके, उन्हें इसका सेवन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से अवगत कराना, शिक्षित करना तंबाकू कर निषेध का उद्देश्य है। विश्व भर में प्रतिवर्ष लगभग 35 लाख हेक्टेयर भूमि पर तंबाकू की खेती की जाती है। तंबाकू की खेती के कारण होने वाली वार्षिक वनों की कटाई का अनुमान 2 लाख हेक्टेयर है। तंबाकू उत्पादन का पारिस्थितिक तंत्र पर कहीं अधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मक्का की खेती और पशुपालन जैसी अन्य कृषि गतिविधियों की तुलना में तंबाकू के खेतों में मरुस्थलीकरण का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा तंबाकू की खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का भारी उपयोग होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो सकती है और परिणाम स्वरूप अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन घट सकता है। बहनों, तंबाकू छोड़ने के लिए आप कई प्रयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम में चर्चा आगे भी जारी रहेगी, उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, तंबाकू कंपनियों की भ्रामक रणनीतियों को उजागर करना और वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को इसके खतरों से बचाना है। इसके सेवन से न केवल स्वास्थ्य बल्कि आर्थिक स्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष का तंबाकू निषेध विषय है आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला, जो ये दर्शाता है कि तंबाकू और निकोटीन उद्योग किसी प्रकार अगली पीढ़ी को लुभाने के लिए नए उत्पाद विकसित करता है, जबकि समय के साथ मजबूत होते जा रहे विश्वव्यापी तंबाकू नियंत्रण उपायों से बचता रहता है। बहनों, इस विनाशकारी लत के प्रति वैश्विक नागरिकता को जगाने, जन स्वास्थ्य की रक्षा करने और एक स्वस्थ नशा मुक्त समाज की स्थापना करने के उद्देश्य से ही इस दिवस को मनाया जाता है। ये दिवस एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि तंबाकू उद्योग के खिलाफ और मानव जीवन को बचाने के लिए लड़ा जाने वाला एक वैश्विक अभियान है। बहनों, आजकल तंबाकू उद्योग ने पारंपरिक सिगरेट की

होता है। ये न केवल मुंह, फेफड़े और स्तन कैंसर का खतरा बढ़ाता है, बल्कि गर्भपात, बांझपन और जल्दी मेनोपॉज जैसी गंभीर प्रजनन समस्याएं भी उत्पन्न करता है। जो महिलाएं गर्भावस्था में तंबाकू या धूम्रपान का उपयोग करती हैं, उनमें मिसकैरेज, स्टिलबर्थ और कमजोर बच्चे पैदा होने का खतरा बहुत अधिक होता है। बहनों, आप तो जननी हैं, अपने परिवार की धुरी हैं। यदि आप खुद बुरी लत के प्रभाव में रहेंगी तो अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखेंगी? बहनों, यदि आपके आसपास परिवार में भी कोई ऐसे लोग हैं जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो उन्हें जागरूक करिए। हो सकता है ये लत एक दिन में ना छूटे, लेकिन एक दिन जरूर छूटेगा। तंबाकू की लत जितनी जल्दी लगती है, उसे छूटने में उतना ही लंबा वक्त लगता है। यदि ठान लिया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। बहनों, तंबाकू केवल इंसानों को प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तंबाकू से एक वर्ष में लगभग 84 मेगाटन से अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। सिगरेट के बर्ड्स, एकल उपयोग वाले जैव अनिम्नकरणीय पाउच और ई सिगरेट के माइक्रोप्लास्टिक द्वारा मृदा में विषाक्त पदार्थों के मिश्रण के कारण ये मृदा और जल को दूषित करता है। सिगरेट बनाने के लिए जल का अधिकतम उपयोग किया जाता है, जिससे जल का दोहन भी होता है। बहनों, आप इसको छोड़ने के लिए कई प्रयोग कर सकती हैं। निकोटीन प्रतिस्थापन चिकित्सा का उपयोग करना, तंबाकू की तलब को रोकने के लिए बिना चीनी वाला च्युइंगम या हार्ड कैंडी चबाना, दैनिक व्यायाम, तंबाकू की तलब होने पर खुद को व्यस्त रखना। बहनों, ऐसी कोई भी लत नहीं जिसे संकल्प लेकर छोड़ा ना जा सके। आइए हम सब मिलकर तंबाकू को ना कहें, अपने आसपास के लोगों को इसके दुष्प्रभावों से अवगत कराएं, जागरूक करें। याद रखें, जीवन चुने धुआं नहीं, स्वस्थ जीवन ही खुशहाल जीवन का आधार है। एक स्वस्थ और तंबाकू मुक्त समाज का निर्माण करें। बहनों, इस चर्चा के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते से पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल।

0: AIR at 90.
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
3: सीमा
4: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे।
3: मिस सीमा
4: जी,
3: अभी पुलिस के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे

रफ्तार जिंदगी में समय सबसे कीमती चीज बन गया है। सुबह दफ्तर जाने की जल्दी, बच्चों को स्कूल भेजने की हड़बड़ी और इस सब के बीच रसोई में घंटों का वक्त बिताना किसी चुनौती से कम नहीं लगता। कई बार तो ऐसा होता है कि रसोई में ही इतना समय और ऊर्जा खत्म हो जाती है कि खुद भोजन का आनंद लेने के लिए ना तो भूख बचती है और ना ही ताकत। आज हम उन छिपे हुए वैज्ञानिक तरीकों, स्मार्ट गैजेट्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी कुकिंग स्पीड को रॉकेट जैसी रफ्तार दे सकती है। तेज़ रफ्तार कुकिंग की सबसे पहली और बुनियादी शुरुआत होती है मेंटल मैपिंग यानी मानसिक तैयारी से। कुकिंग स्पीड बढ़ाने का सबसे बड़ा नियम है पैरेलल प्रोसेसिंग यानी एक साथ कई काम करना। मिसाल के रूप में, अगर आप रसोई में जाकर सबसे पहले सब्जी काटने बैठते हैं तो यह गति के मामले में एक गलत शुरुआत है। स्मार्ट और तेज़ तरीका यह है कि आप सबसे पहले गैस पर कढ़ाई या कुकर चढ़ाएं, उसमें तेल या पानी डालें और जब तक वह गर्म हो रहा है ठीक उसी अंतराल में प्याज या टमाटर काट लें। जब प्याज कढ़ाई में भून रही हो उस 3-4 मिनट के समय में आप अगली सब्जी या मसाले तैयार करें। कभी भी एक काम के पूरी तरह ख़त्म होने का इंतज़ार ना करें, बल्कि एक काम के दौरान मिलने वाली खाली समय के टुकड़ों का इस्तेमाल अगले काम की तैयारी में करें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स की जो सीधे तौर पर आपके खाना पकाने के समय को आधा कर देती है। सबसे पहली ट्रिक है गर्म पानी का इस्तेमाल। गर्म पानी को ग्रेवी में डालने से खाना बिना रुके उसी सेकंड पकना जारी रखता है। इससे ना सिर्फ गैस बचती है बल्कि आपकी कुकिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। गति बढ़ाने में नमक की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। जब आप कढ़ाई में प्याज या टमाटर भून रहे हों तो उस

0: रविवार या छुट्टी के दिन ही उबले हुए चने, राजमा, मटर या छोले को उनका पानी पूरी तरह छान कर छोटे छोटे पैकेट्स या एयर टाइट डिब्बों में फ्रीज कर देते हैं, तो व्यस्त वर्किंग डेज में छोले या राजमा जैसी भारी और समय लेने वाली डिश बनाना भी आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। आपको रात में इन्हें भिगोने भूलने का भी कोई डर नहीं रहेगा, और सुबह बस फ्रीज़र से निकाला, भुने हुए मसाले में डाला और आपकी शानदार डिश तैयार हो गई। खाना पकाने के लिए स्मार्ट कुकिंग टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। प्याज, टमाटर और सब्जियों को जल्दी काटने के लिए वेजिटेबल चॉपर का इस्तेमाल करें। खाना गर्म करने, भूनने या बेक करने के लिए माइक्रोवेव या एयर फ्रायर का इस्तेमाल करें, इससे समय की काफ़ी बचत होती है। खाना पकाने के लिए हफ्ते भर का मेनू पहले से तय कर लें कि सुबह क्या और रात को क्या बनेगा। सब्जियों को उबालते समय थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाने से वे जल्दी पक जाते हैं और रंग भी अच्छा होता है। अगर आप कोई भारी ग्रेवी या सूप बना रहे हैं तो उसे ज़्यादा मात्रा में बनाएं और आधा फ्रीज कर लें। अगली बार यह आपका काफ़ी समय बचाएगा। खाना पकाने के लिए गोल या अनियमित आकार के बर्तनों की तुलना में सपाट तल वाले बर्तन आंच को अच्छी तरह सोखते हैं और खाना जल्दी पकता है। बड़े बर्नर पर हमेशा बड़े बर्तन और छोटे बर्नर पर छोटे बर्तन ही रखें। यदि छोटे बर्तन को बड़े बर्नर पर रखेंगे तो लपटें बाहर जलती रहेंगी, जिससे गैस की भारी बर्बादी होगी। खुले बर्तन में पकाने की तुलना में ढक्कन लगाकर पकाने से ऊष्मा अंदर रहती है, जिससे खाना तेज़ी से पकता है और गैस कम खर्च होती है। भोजन में उबाल आने के बाद गैस की आंच को धीमा कर दें। आवश्यकता से अधिक पानी ना डालें, अधिक पानी उबालने में गैस की अधिक खपत होती है। फ्रिज से निकाली हुई ठंडी चीज़ों को तुरंत गैस पर ना चढ़ाएं, उन्हें कमरे के तापमान पर आने दें, फिर पकाएं। अंत में रसोई की गति इस बात पर भी बहुत गहराई से निर्भर करती है कि आपकी चीज़ें कितनी व्यवस्थित हैं। अपने मसालों के डिब्बों को गैस स्टोव के ठीक पास एक निश्चित और सुलभ क्रम में रखें। नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, ये चार बुनियादी चीज़ें हमेशा सबसे आगे होना चाहिए, ताकि आपको इन्हें ढूंढने में एक सेकंड भी बर्बाद ना करना पड़े। काम खत्म होते ही चाकू, चॉपिंग बोर्ड और खाली बर्तनों को तुरंत सिंक में डाल दें और किचन काउंटर को हमेशा साफ रखें। एक साफ, खाली और व्यवस्थित काउंटर टॉप आपको तेजी से काम करने की मानसिक आज़ादी, सकारात्मक ऊर्जा और ज़बरदस्त गति देता है। इन तमाम छोटी छोटी मगर बेहद वैज्ञानिक, तार्किक और असरदार ट्रिक्स को अपनी रोज़मर्रा की रसोई का हिस्सा बनाइए। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि जो काम पहले 1.5 से 2 घंटे में होता था, वह अब मात्र 30 से 35 मिनट में बेहद आसानी, सहजता और आनंद के साथ पूरा हो रहा है। स्मार्ट कुकिंग हमें समय की बचत के साथ साथ एक तनावमुक्त, ऊर्जावान और स्वस्थ जीवन का अमूल्य उपहार देती है। आज ही से इन्हें अपनी जीवन शैली में अपनाएं और अपनी रसोई को एक हाई स्पीड, आधुनिक और खुशहाल जगह में बदलें।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता, खाना पकाने के स्मार्ट तरीके। वार्ताकार थी प्रियंता प्रेमलोचा। इसके साथ ही बहनों, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए अपनी सहेली मुनमुन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे शहरी महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम नारी लोक। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर संगम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको बलराम दास मिश्र का तबला वादन सुनवा रहे हैं। 3 तालबे आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं बासुकीनाथ मिश्रा।

आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारे कलाकार हैं रिंकू रानी। इनके गाए लोक गीत आप एक बार फिर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद, जिसके लिए आइए शामिल होते हैं रांची की प्रसारण सभा में।

हमें खेद है कि संचार व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने के कारण हम आपको प्रादेशिक समाचार नहीं सुनवा पाए। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग का शेष भाग। आज की हमारी कलाकार हैं रिंकू रानी। आइए इस भाग में उनसे सुनते हैं पहले ये खिलौना गीत।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: कार्यक्रम के अंत में आइए रिंकू रानी से सुनते हैं ये गोदना गीत।

आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारे कलाकार थे रिंकू रानी। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक संताली पत्रिका कार्यक्रम जीवन झरना।

0: फैला हुई उचुले दा निये दिन गी हिंदी पत्रकारिता दिवस रे मनाव एतहो लेना चिदा की नुई गी हिंदी भाषा रे पत्रकारिता रिया शुरुआत रे चिन्हित हुई लेना निये दिवस रे पत्रकार कु सम्मान दड़े आर पत्रकारिता रेना महत्व बाबत रे जागरूक फैलाव उचू लेता हिंदी पत्रकारिता समाज रे अहमा लिकान बड़ी कमी कु खिलाफ आवाज उठव लेता है। कटी गिद्र कुआ बपला छुआछूत अशिक्षा नशा और आयोहर उत्पीड़न लिकान समस्या कु बाबत जनता कु ठे जागरूक के कुआ स्वतंत्रता आंदोलन समय रे हिंदी समाचार पत्र कु देशभक्ति भावना जगाव लेना नेता हिंदी पत्रकारिता केवल कागज ना अखबार तक सीमित बनुआ टीवी रेडियो मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया माध्यम रे हिंदी पत्रकारिता चारों दिशा रे फैलावकना नीतो समय रे हिंदी पत्रकारिता देश विदेश सबसे प्रभावशाली पत्रकारिता रे कना आतु से शहर बाजार तक अड़ी करोड़ होड़ हिंदी समाचार नेलेदा आर अंजोम कना हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र रे चौथा स्तंभ हिसाब रे मेना आर जनता कुठे सही सही जानकारी एम दाड़या कना निष्पक्ष सच्चा और जिम्मेदार पत्रकारिता समाज रे विकास लगी ते अड़ी जरूर गया उना लगी ते हिंदी पत्रकारिता केवल भाषा रेना विकास बांग कना मेन खान देश रे एकता जागरूकता शिक्षा और लोकतंत्र मजबूत बना रेना हो महत्वपूर्ण भूमिका निभावे कना नियस समय रे हिंदी पत्रकारिता पहिल समय खन देश विदेश रे अंग्रेजी पत्रकारिता रे प्रभाव अड़ी गी तहन कना मेन खान तिहिन हिंदी भाषा रे झंडा चारों दिशा रे लहराव कना उनाते 30 मई हिलो हिंदी पत्रकारिता दिवस मना हुयु कना निया दिन हिलो स्कूल और कॉलेज रे निबंध वाद विवाद पत्रकारिता क्विज हुयु कना और मीडिया हाउस रेन ओकोय लट्टू पत्रकार कान को उनी पत्रकार को सम्मानित किया उनाते निया दिन दिशा दहोय लगी ते हिंदी पत्रकारिता दिवस मना हुयु कना आदो दिलानी दो मिटे कहनी बुन अंजमा कहनी अनोलियो दो मानुतान होलिका मरंडी
1: सिंह दो दका जोंबी कते गितिक को में आर नी इंदो दो कुमड़ो सीता लका दणा बणाय में दुड़ो दुड़ो जोमेम न्यामेदा थो हम दो चेत जलाए मिया इनान सीता को नाम बाबाय सियो कना बासकी हो बाय जोम कदा हम दोम जोम किदा देना हा फिराव काय उना दो बांग बांग दो उड़ा रिया बांग दो बाहरे रिया उकाटा कमी तिकी बाम गखुड़ो कना जुदी नुंका बड़ाई रगेम तहन खान हपोय ना अलिं बांग हिलो चे डोभा ढोण लेका बाम कोयो अका मतला इंगा दो इनान खन उडुको बोलो केटेज तबु मतला एगे रिदी कना मतला दो बाड़गी दुवर बोलोता रे मिटेन घांजलोंग पारकोम रे खांजो वकना मतला हो एनते चिट बाम मिताय एकेन एगेर अचु सेगी कमिया आतु रेन कुड़ा को ताक बतार जतोवा को कमिया मेनखान मतला दो चिकाते चो कमी कुरे मन दो बांग लगा ताय आर बापला बिह दोंग सगोय से मिला ठेला दड़ान मा सनाम कुड़ा खन जबर आर को दिन मा घांजलोंग पारकोम रे जपीट जबर मतला से आर मतला हे मतला दो निमदा मंडी नुतुम दो बांग कान ताया हंडी पौरो न्यू मताल होड़ लिका मीत गितिज को ए तहन ते मताल गी को मितावया निमदा मंडी नुतुम एम अंजोम लेखान ओहम ओहमा लिया जे नौकान नुतुमान कुड़ा दो नौकाय हुई दाड़िया मेनते आसल नुतुम ताय दो जागोलाल मेनखान आतु टोला से आडे पासे रेन होड़ को दो मतला नुतुम तिगी को बाडाइया आर मीत बार गड़ोमिया होड़ दो सुतोलाल मेन काते हों को लांदावाय गिया निंदारा दिनम गी इंगात आपाते ताकेन किन एगेर बाड़ाई गया मेनखान तिहिन दो मतला दो इंगाते आ एगेर दो जिल जांगरे भिजवा दिया सरी गी को मेना आसांग पुटा होड़ दो एगेर दो अड़ी तेट की हासु कुआ इनका बड़ाय तिगी मंजान जोम ओक्ते हुयेन खान मतला रिनी दो दका जोम अरुबो लगी लुटा ते दा मतला इदी आदि ते मिताय कना चिद आदो बुड़ा लिका दोम बोट बोटो वकना बाम बिरित दाड़िया कना दिनम हिलो गोगो ताकिन किन रोड़ेट मिया एनहो लुतुर रिगी बांग हुड़त आम कना मतला दो घांजलोंग पारकोम रे घंजुआ काते गी देख लोंडो लोंडो होड़ लिका इराते ए कोयो रकाब अकावा दिया आर चेत हों बाय रोड़ेदा इराते दो बेंगेत उरी काते मिताय कना चिकाइनाम बांग दोम रोड़ेदा आर बांग दोम लड़ाव कना चेत डांडा रपुट एंतमा से अलांग ओबोर एंतमा मतला दो इराते आ नौकान कथा अंजोम काते मन मंदिल रिया चोट चूड़ा दो रचोट न्यू रेंतया उनी दो अड़ी आटे दूकना इंगात आपाता रोड़मा एंते हेगी मेनखा आज रेन इरावा मोचा खन उनकान सायगत अड़ांग अंजोम लगी तेदो सपड़ा बाय तहें कना मतला रिनी दो लुटा दा मतला दोहो अटो दिया और आज दो इद्री ते हुरपा हुरपी दकाय उड़ा से ए बोलोइना मतला दो गितिज खने बिरिनिना उना पारकोम रे दुड़ूब कते गी जुहा चापू कते ᱮᱨᱟᱛᱮ ᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫᱟ ᱰᱷᱩᱨᱩ ᱰᱷᱩᱨᱩ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱫᱚᱭ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱪᱚ ᱟᱹᱯᱤᱨ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱚᱦᱚᱢ ᱵᱩᱡᱽᱞᱤᱭᱟ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱴᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱟᱸᱡᱽᱞᱚᱝ ᱯᱟᱨᱠᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱵᱤᱨᱤᱫ ᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱸᱴ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱭ ᱨᱚᱲ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱯᱮ ᱟᱹᱲᱤᱥᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱰᱩᱠ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱧ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱨ ᱛᱤᱥᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱦᱮᱡ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜᱼᱟ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱯᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱲᱜᱤ ᱥᱮᱫ ᱩᱰᱩᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨᱮ ᱢᱚᱦᱰᱟᱭᱮᱱᱟ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱚᱪᱞᱮ ᱰᱷᱟᱹᱵᱩᱝ ᱥᱮᱫ ᱮᱸᱜᱟᱛᱮ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱠᱤᱱ ᱨᱚᱲ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱮᱸᱜᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱫᱚᱨ ᱠᱷᱚᱫᱚᱨ ᱮᱜᱮᱨ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱮ ᱨᱚᱲ ᱮᱫᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮᱜᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱞᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱫ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮᱢ ᱧᱤᱨ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱮᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱮᱫᱮ ᱥᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱫᱤᱛᱮ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱷᱤᱨᱤᱛᱮ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱛᱮᱱᱮᱱ ᱛᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱟᱢᱟᱞᱮ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱟᱠᱟ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱮᱸᱜᱟᱛᱮᱫ ᱛᱟᱠᱤᱱᱟᱜ ᱮᱜᱮᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱟᱡ ᱫᱚ ᱵᱤᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱫᱚ ᱰᱟᱹᱵᱩᱝ ᱰᱤᱯ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱩᱱᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱟᱹᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱞᱮᱨᱮᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢᱤᱧ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱮᱫᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱪᱤᱠᱟᱹᱧ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜᱼᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱤᱨᱟᱫᱚᱭ ᱦᱟᱹᱥᱩᱨᱮᱱᱛᱮ ᱜᱩᱯᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱜᱟᱹᱭ ᱰᱟᱝᱨᱟ ᱜᱚᱲᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱫᱮᱨ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱟᱞᱦᱟ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱤᱯᱨᱩᱫ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱥᱟᱵ ᱥᱩᱨᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱦᱚᱸ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱢᱩᱦᱰᱟᱜ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱭᱟᱜ ᱨᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮ ᱥᱮᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱡᱟᱣᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱦᱩᱫᱤᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱞᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱤᱫᱤᱭᱤᱧ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱵᱚᱞ ᱮᱱᱮᱡ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱮ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱪᱷᱩᱢᱩᱠ ᱵᱟᱲᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱮᱫᱟ ᱯᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱪᱷᱩᱢᱩᱠ ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱲᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱪᱮᱬᱮ ᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱚᱠᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱵᱟᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱩᱢᱠᱟᱣ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱞᱤᱯᱩᱨ ᱯᱟᱹᱭᱜᱟᱹᱱ ᱥᱟᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱷᱩᱢᱩᱠ ᱵᱟᱲᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱣᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱨᱛᱮ ᱪᱤᱞᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱟᱱᱟᱭ ᱡᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱟᱞᱜᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱧᱟᱢᱤᱧ ᱟᱫᱚ ᱦᱟᱯᱮ ᱟᱪᱷᱟ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱧᱚᱜ ᱞᱤᱧ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ ᱮᱱᱛᱮ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱫ ᱞᱤᱧ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤᱛᱚᱨ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱡᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱪᱮᱫ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱪᱚᱴ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱚᱴᱟ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱰᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱵᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱦᱟᱛᱟᱲ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮᱫ ᱜᱮᱭ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱮᱫᱟᱭ ᱱᱤᱛᱨᱮ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱠᱤᱫᱩᱜ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚᱠᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱧᱟᱢᱤᱧ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱪᱚᱭ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱠᱮ ᱵᱟᱭ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱜᱷᱟᱴᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱫᱚᱭ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱟᱠᱚ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱥᱤᱢᱟᱹᱛᱮ ᱰᱤᱵᱤᱭᱟᱣᱟᱱᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱪᱚ ᱚᱱᱟ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩᱨ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱥᱮᱫ ᱜᱮᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱴᱤ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱵᱮᱨ ᱦᱟᱯᱮ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱭ ᱯᱮᱭᱟ ᱟᱭᱳ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱮᱸᱜᱟᱛᱮᱫ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱮᱨᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱟᱭᱳ ᱩᱱᱤ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱰᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟᱭᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱹᱭ ᱰᱟᱝᱨᱟ ᱥᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱟᱹᱥᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩᱨᱩ ᱚᱡᱷᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱟᱭᱳ ᱜᱮᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱭᱟ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱫᱚᱭ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱮᱫᱟ ᱱᱩᱭ ᱰᱟᱹᱱ ᱟᱭᱳ ᱜᱮ ᱯᱟᱥᱮᱡ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱚᱛᱮᱡ ᱟᱫ ᱠᱚ ᱛᱮᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱵᱟᱲᱟ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱫᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱩᱪᱚ ᱵᱟᱠᱷᱮᱬ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱪᱤᱴᱟᱜ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱜᱚᱫ ᱮᱱᱟ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱫᱚ ᱠᱮᱠᱞᱮᱥᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱨ ᱪᱮᱴᱮᱡ ᱞᱮᱠᱟ ᱰᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱞᱟᱢᱮᱫ ᱟᱹᱯᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱫᱚᱭ ᱥᱟᱦᱮᱸᱫ ᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱡ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱛᱮᱪᱚ ᱠᱚ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱮᱸᱜᱟᱛᱮ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱤᱱᱫᱟ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱫ ᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱮᱢᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱮᱱᱟ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱮᱸᱜᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱚᱫ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱤᱱᱫᱟ ᱜᱚ ᱟᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱞᱮ ᱢᱚᱴᱷᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱜᱚᱫ ᱠᱮᱫᱟ,

काळा चितान थरी मिना थरी चितान लुटा मिना लुटा चितान तयमिन नवा चवार बबेर पसी मीना। और

कौन है बॉस? रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक संताली पत्रिका कार्यक्रम जीवन झरना, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने वाले हैं। आइए शामिल होते हैं पटना की प्रसारण सभा में प्रादेशिक समाचारों के लिए।

छियासी दशमलव एक मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग ने आज बोधगया के विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान भी लगाया। राष्ट्रपति ने बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता स्तूप में पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने बोधगया स्थित म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। इससे पहले गया हवाई अड्डे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद है। राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग की ये यात्रा भारत और म्यांमार के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा बौद्ध विरासत से जुड़े संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के साथ साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन लाइव पर। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य में आंधी बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। हालांकि सरकार ने केवल 7 लोगों की ही मौत की पुष्टि की है। हमारी संवाददाताओं ने बताया कि गया में 3, नवादा, पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं सारण, खगड़िया, रोहतास और भागलपुर में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन हादसों पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी बारिश के कारण सब्जी, लीची और आम की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई। गया और सीवान में ट्रेनों का परिचालन भी बाधित हुआ। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान के सिसवन में सबसे अधिक 135.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं गोपालगंज के भोरे में 90.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नाव के सुरक्षित परिचालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कहा गया कि बिना निबंधन वाली नाव का परिचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निर्देश दिया गया कि सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पहले गंगा नदी में नावों का परिचालन नहीं किया जाएगा। साथ ही सभी घाटों पर पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि खराब मौसम की सूचना मिलने पर गंगा नदी में नाव के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा। अररिया जिले में श्रम नियोजन विभाग की ओर से 1-दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वहीं जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर 108 लीटर नेपाली शराब जब्त किया है। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड स्थित रघुनाथपुर खराट गाँव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। रोहतास जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज सासाराम सदर अस्पताल परिसर से तंबाकू और नशा निषेध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। म्यांमार के सदर यू मिन आंग हलाइंग ने आज बोधगया के मशहूर महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र महाबोधि वृक्ष के नीचे ध्यान भी लगाया। सदर ने बकरौर वाक़े तारीखी सुजाता स्तूप में पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने बोधगया वाक़े म्यांमार के मुख्य बौद्ध मठों का भी दौरा किया। इससे पहले गया हवाई अड्डे पर गवर्नर सैयद अता हसनैन और वजीर ज़राअत विजय कुमार सिन्हा ने म्यांमार के सदर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उनके साथ आला सतही अफसरान और बौद्ध नुमाइंदों का वफद भी है। सदर यू मिन आंग हलाइंग का ये दौरा भारत और म्यांमार के दरमियान तारीखी, सकाफती और बौद्ध विरासत के रिश्तों को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के साथ साथ बैन फरीकी तआवुन को नई रफ्तार अता करने की सिमत में एक अहम पहल मानी जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्याल शेयर करेंगे। ये मन की बात प्रोग्राम का 134वां एडिशन होगा। इसका नशरिया आकाशवाणी और दूरदर्शन के मुकम्मल नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। AIR न्यूज़, DD न्यूज़, वज़ीर आज़म दफ्तर और वजारत

0: लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता

0: ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गयाजी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराइकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
4: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य

0: समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमेनाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धर्मवीर का एक दो गाना। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म द ट्रेन का गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: Akashvani at 90.
1: कार्यक्रम के अंत में आइए सुनवाते हैं आपको फिल्म उत्सव का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के ठीक 3 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको राजस्थानी लोक संगीत सुनवा रहे हैं। हमारे कलाकार हैं डूंगर राम भाट और साथी। आइए आरंभ में इनसे सुनते हैं मांड।

आप सुन रहे थे प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको राजस्थानी लोक संगीत सुनवाया। कलाकार थे डूंगर राम भाट और साथी हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। नीचे सुनिए देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत मिनी वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3:25 हो चुके हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इसके लिए आइए शामिल होते हैं विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में।

प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस

0: ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
1: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
0: आप कौन हैं?
1: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
0: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
1: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
0: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
1: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे हैं। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
0: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
1: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
0: मेरा नाम डेजी है।
1: डेजी?
0: क्या हुआ?
1: मुझे मुझे कुछ याद आ रहा है।
0: क्या?
1: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
0: हाँ।
1: आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की?
0: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
1: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
0: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
1: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
0: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
1: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
0: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा बड़ किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: डॉक्टर रामदास, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर,
3: गुड मॉर्निंग बेनी, गुड मॉर्निंग।
2: कभी तबीयत कैसी है?
3: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं। अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
3: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
3: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या? गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
3: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
2: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
3: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
2: अच्छा,
3: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
2: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
0: नमस्ते डॉक्टर।
2: ओ नमस्ते,
3: कहाँ गई थी तुम?
0: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
3: अच्छा,

0: तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
1: मई पत्नी जो ठहरी उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
0: हम दोनों के लिए।
2: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
0: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे वरना।
1: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ, फिर मिलेंगे।
0: अच्छा,
2: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं? हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं।
0: इसमें हर्ज क्या है? सच तो यही है ना।
2: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
0: इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
2: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें। इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ, शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: ए, डेज़ी, इधर आओ ना।
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: अरे, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। ले जाओ बेनी, ले जाओ ना तुम। अरे, तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिरी ना से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, नहीं मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।
0: ठीक जी।
1: बेनी, एक बात बताओ।
0: पूछो।
1: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
0: बताऊं? दोनों।
1: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
0: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में। कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
1: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ। तुम बेनी हो ना?
0: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
2: हाँ, मैं लॉरेंस हूँ।
0: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
2: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
0: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका लॉरेंस।
2: और मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
0: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
2: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ?
0: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
2: यही कोई 14 या 15 साल।
0: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में।
2: Exactly.
0: गजब की याददाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
2: नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। तो मैं देखते ही समझ गया था
1: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
2: सब वो बातें रहने दीजिए अब। बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
0: चेस्ट में पेन है।
2: हाँ,
0: दिल की तरफ भी पेन है।
2: वैसी
0: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
1: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
2: हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेज़ी
1: जी,
2: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
0: डेज़ी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेज़ी के सुपुर्द कर दिया है।
2: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
0: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
2: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर, जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूं, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
0: बाय।
1: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज
0: दिया। ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
1: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा, मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
0: अरे गिरिजा, तुम?
1: आप यहाँ?
0: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
1: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
0: जरा शिष्टता से बात करो।
1: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
0: जरा आहिस्ता बोलो।
3: मुझे पहचान लिया आपने?
0: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
3: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
0: तुम ऐसा सोचती हो?
3: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
0: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
3: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। हा? इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
3: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती। आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
0: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
3: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे, टेरर।
0: मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है?
3: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
0: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
3: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
0: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ।
3: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा?
0: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
4: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रहे। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती, मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
3: मुझे कुछ नहीं कहना है।
0: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूँ।
3: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
0: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
3: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
0: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
3: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
0: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन

0: मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया, बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
1: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
0: कितने रुपए खर्च हुए?
1: करीब 600, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
0: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकते हो। डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
1: क्या?
0: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
1: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
0: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
2: गिरिजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
3: वो बेनी कहाँ है?
2: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
3: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
2: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
3: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है। वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
2: डॉक्टर, डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
3: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
2: मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
3: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
2: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
3: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो, बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अरे लो, बेनी आ रहे हैं।
4: आइए आइए, कहाँ पे जाना?
5: ओ डॉक्टर
4: भाई, जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। इस पैकेट में क्या है?
5: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
4: भाई रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
5: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
4: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माय बेस्ट।
5: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
4: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। I don't like it. अच्छा तो मैं चलता हूं अब। See you again. Bye.
2: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
5: तुम्हारे लिए एक चीज है।
2: अच्छा, देखो तो।
5: लो, देख लो।
2: साड़ी, ये अब काहे को? और यहाँ
5: मेरी ओर से प्रेजेंट।
2: प्रेजेंट?
5: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
2: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी, हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
5: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है। तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था। तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
2: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
5: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझो। तुम अगर ऐसी ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देख कर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो, अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो, रूठ जाओ? नहीं नहीं ना। अच्छा, तो फिर हंस दो। देखो, ये ऐसे ऐसे।
2: अरे, क्या क्या हुआ आपको? डेजी, ले जाइए, ले जाइए ना। बेनी, बेनी, बेनी, डॉक्टर, डॉक्टर! कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा। लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से डर गए।
6: Oh, no.
2: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
6: आखिर ये हुआ कैसे?
2: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा। सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
7: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
2: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
7: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
2: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई। मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
7: ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो। हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो, देखो देखो, इससे बेनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। डेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ। ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे।

0: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर मैं और लॉरेंस विवाह सूत्र में बंध गए।
1: अच्छा,
0: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
2: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
3: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
4: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
3: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
5: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
3: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
5: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
3: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
6: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
7: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
6: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: थे जवान।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम पर रोग लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो।
1: इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन।
3: तो

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओं चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चूहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी,
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ घर में भी।
0: हाँ।
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा।
1: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो और जो विर्ज खिलाई, अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
0: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं और गुंजा
1: करती रहूंगी।
0: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी। और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
0: अच्छा।
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
0: जी,
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसे ही रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई।
0: अच्छा।
1: आपने

0: तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है।
1: जी
0: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन
1: जी
0: ऑब्जर्व किया,
1: जी
0: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
1: अरे वाह,
0: हाँ
1: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि आप
0: हाँ
1: अभिनेत्री बनेंगी,
0: हाँ
1: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
0: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था,
1: अच्छा
0: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे। कानपुर में मैं थी
1: जी।
0: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी, और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को, और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो
1: जी
0: इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी
1: अरे
0: स्कूल
1: वाह।
0: में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
1: अच्छा
0: हाँ तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
1: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि साधना
0: हाँ
1: गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
0: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे, और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए, है
1: क्या खूबसूरत
0: ना।
1: गीत है।
0: तो शुरुआत मेरी उससे हुई, और फिर बस गाने लगी, और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उससे वक्त आवाज़ अलग थी मेरी, मतलब
1: जी
0: आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी।
1: उतनी बुलंद आवाज
0: हाँ
1: थी
0: बुलंद आवाज थी।
1: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब
0: हाँ
1: छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती
0: हाँ
1: परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थीं, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य, अभिनय, बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए हों।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा,
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए। अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत दुखद घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नर्तकी हैं उस जोगीरा में, और हमने देखा
1: जोगीरा में मार खा के की हूं।
0: वो किस्सा भी जरा बता दे।
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना था। मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना, लेकिन डंडा मारा पैर में। एकदम ठीक कर दिया मैंने।
0: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते
0: लाठी के भूत।
1: लाठी के भूत मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी।
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया।
1: और क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
0: हाँ,
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक कटक के डांस किया उसने। फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे, इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप एक सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा,
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे। तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ।
0: हाँ।
1: तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
0: अच्छा,
1: हाँ ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर। कैमरे की तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ उनको बड़ी

0: नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ। तो
1: अच्छा
0: दो तीन चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है,
1: हाँ
0: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती थी,
1: जी
0: तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया।
1: जी
0: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
1: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
0: मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप
1: अच्छा
0: पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए, तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया, कम हो गया, पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम, मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को, हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है, और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं।
1: जी, तो थोड़ा सा खुद को परख के आए ऐसा आपका कहना है,
0: हाँ
1: और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में,
0: बिल्कुल
1: अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो
0: हाँ
1: मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
0: हाँ ऐसा
1: एक
0: तो
1: ये
0: कुछ
1: ईगो
0: नहीं।
1: भी सामान्यतः लोगों में
0: हाँ
1: होता है
0: होता
1: कि हमने
0: है।
1: किया है,
0: हाँ
1: तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं, कुछ तैयार
1: नेचुरली?
0: नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना,
1: हाँ
0: वो भी एक्टिंग ही चाहता
1: जी
0: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी,
1: जी
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता, नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं, क्योंकि हमको पता है वो अपनी समझ
1: जी
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज़ नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूँ,
1: जी
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है,
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं
0: नहीं
1: करना ही
0: करना है।
1: एक्टिंग है।
0: हाँ तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ, ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ
1: हाँ
0: कि
1: जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो साधना जी हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं, तो मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी
0: सुनाई।
1: पसंद सुन ली जाए
0: अच्छा ऐसा।
1: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो।
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं,
1: जी
0: तो कुछ दिल ने कहा, और ऐसी भी बातें होती हैं,
1: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत है।
0: खूबसूरत और
1: जी जी
0: बहुत
1: जी
0: मीठा संगीत है।
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।
2: कुछ दिल

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30, ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा। तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं तो।
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए,
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे। तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे
0: हाँ
1: तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी,
0: जी,
1: तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा,
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था, तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी। और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं तो
0: हाँ
1: ह्यूमन टच नहीं रह गया है,
0: जी,
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था, और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
0: जी
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है,
0: जी
1: तो इसलिए मैंने कभी उन पे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा
0: जी
1: ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा।
0: जी
1: लेकिन हाँ, अच्छा लगा। प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नाइस
1: प्रोडक्शन
0: नाइस
1: में,
0: जी,
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है,
0: हाँ
1: बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे।
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था,
0: अच्छा
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं,
0: जी
1: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी
0: चलो
1: वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत है
0: आदतन
1: बैठने।
0: अनुसार आप लड़कियों से
1: हाँ,
0: घिरी रहती
1: तो
0: थी
1: टाइम निकल जाता है, बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी।
0: जी
1: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है, तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहां पे।
0: नहीं,
1: हाँ
0: वैसे आप बहुत हॉट हैं, शॉल की जरूरत
1: हाँ
0: आपने तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के
1: हाँ
0: बाद। जी
1: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने,
0: जी
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई हैं उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकरावर्णम फिल्म आई थी,
0: जी
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकरावर्णम। तो
0: ओके
1: जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में,
0: जी
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे, आबिद रिजवी, मुझे
0: जी
1: बिल्कुल बेटी की
0: आबिद
1: तरह,
0: रिजवी जी
1: हाँ,
0: जी
1: तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल।
0: नीचे का जी
1: लेकिन वो ले गए
0: जी
1: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम, मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन 2 मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं, तो
0: वही सेम
1: उसमें
0: फिल्म।
1: हाँ सेम फिल्म
0: ओह
1: लेकिन आपको जो गुरु हैं उनकी बेटी का रोल, मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूँगी जुड़ना ऐसी फिल्म
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहाँ पे
0: जी बिल्कुल
1: साउथ में, सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
0: बोलती
1: हाँ
0: आंखें जी
1: तो इनको ऑन इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए,
0: जी
1: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, 2 बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद,
0: हाँ जी जी उसके बाद ही।
1: हाँ तो मस्ती में की बस और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
0: जी,
1: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
0: अच्छा।
1: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
0: जी,
1: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तो वो फिल्म की उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के, दादी बन के, चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
0: हाँ।
1: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी, फिर बच्चों को देखना ये सब
0: जी जी।
1: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी,
0: जी जुगनी,
1: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
0: बहुत
1: है।
0: अच्छी
1: हाँ।
0: फिल्म जी।
1: तो ये नए नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब, तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
0: जी।
1: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल।
0: अच्छा।
1: हाँ तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके। दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
0: मिलके काम कर रहे हैं, पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं।
1: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर वो, उसमें मजा आया मुझे बहुत।
0: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है, तो आपको क्या अलग लगा पहले का? और
1: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
0: अच्छा।
1: हाँ क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे।
0: हाँ।
1: कि ऐसा ही करना है, और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी
0: जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा।
1: पति का नाम राजकुमार
0: ही नहीं, राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
1: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
0: अच्छा। मैं हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
1: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा अब नहीं करूंगी। तो ये बिहार बिहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है, तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम। और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की,

0: हूँ और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने।
1: जी
0: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले, मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने। इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू, वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं, कभी दाढ़ी रख के आ जा, इनको इतना गुस्सा है। बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली।
0: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर,
1: हाँ
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। फिर
1: अच्छा,
0: मेरी
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए थी लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी थी।
0: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी।

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो
1: है,
0: वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना इस एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने जबकि वो चले गए इस दुनिया से
0: जी,
1: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी,
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको
0: इतना लाइक तो नहीं लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी जी, लेकिन
0: बहुत प्यारी है।
1: हाँ वो
0: बहुत अच्छी फिल्म जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी।
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा
1: हमें अपनी जो बाइयाँ आती थी उन सबसे तो

0: मतलब अब वो चाट और लस्सी
1: वो
0: खाते
1: खाते
0: पीते
1: पीते। हाँ,
0: बड़े जी।
1: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं, सिर्फ
0: अच्छा
1: मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने
0: अच्छा
1: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे, तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे ये,
0: सरदार
1: हाँ,
0: खड़े हैं और
1: तो हमारा
0: भोजपुरी बोल रहे
1: पंजाबी
0: हैं।
1: एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी,
0: जी
1: हाँ, ये काफी फर्क है।
0: जी
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए, अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या,
0: अच्छा,
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है, वो गीत हम सुनाना चाहेंगे।
1: देखिए, कौन दिशा में तो सब गाते ही हैं,
0: जी
1: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे, चंदन चंदन, तो एक
0: हाँ
1: वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी,
0: जी
1: और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था,
0: जी
1: चंदन चंदन ऐसा,
0: बहुत अच्छा।
1: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है गाना।
0: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इस गीत के?
1: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
0: रविंद्र जैन वहां पे
1: हाँ
0: उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे,
1: हाँ
0: गाया जा
1: रवि
0: रहा
1: जी,
0: होगा,
1: हाँ,
0: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते
1: बहुत
0: समय?
1: अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा, अगर आप
0: जी बहुत
1: ये,
0: खूबसूरत गीत
1: हाँ, और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था,
0: है।
1: और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे,
0: जी
1: और आज तक मैं बहुत बहुत ज़्यादा इसको पसंद करती हूँ।
0: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो,
1: बट जितना था सब भरा हुआ था। और उसकी जो ऊर्जा होती है ना, वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे
1: भैया, मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था। उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने
1: में, और सुना रहे थे पसंद है नहीं है, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी, यू नो
0: जी,
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
0: शब्द भी लिख लेते थे
1: एक सेकेंड में।
0: 30 गाने एक समय पे,
1: 32 होंगे 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
0: लगातार।
1: दादा कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल, शुरू कर दिया। तो उनसे,
0: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
1: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए, जिसमें राजबाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं, और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता।
0: ये रविंद्र जी ने
1: आपसे, क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे, और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
0: जी। और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो आनंद ही अलग आता होगा।
1: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है।
0: अच्छा,
1: तो आई थिंक वो अक्खड़पन में सब कुछ सीख गई। अल्लड़पन कहते ना,
0: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई बचपन से।
1: ये बात है, मेरे दोनों, मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको

0: ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
1: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना,
0: हाँ,
1: लगेगी तो
0: लगे,
1: संभाल लेना।
0: हाँ।
1: बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना नई रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे ही घूमते
0: नहीं
1: फिरते?
0: नहीं बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अभी शूटिंग भी करेगी, तो ये
1: हाँ,
0: चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था,
1: अच्छा,
0: नॉट फ्रॉम माई हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें। लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फ़ोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो,
1: अरे वाह,
0: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी। तो इन
1: हाँ,
0: लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने
1: एक
0: बोल
1: बार
0: दिया।
1: में बोल
0: तो
1: दिया।
0: मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
1: यानी
0: तो
1: आपको
0: हाँ
1: मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी
0: थोड़ा
1: अच्छा
0: सा,
1: मिला,
0: हाँ
1: दोनों
0: मेरी
1: जगह
0: सास
1: बढ़िया।
0: ससुर तो बहुत अच्छे थे,
1: जी
0: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहें।
1: जी बिल्कुल। साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का जो आपकी बदमाशियों से परेशान है, पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है
0: नहीं
1: या?
0: नहीं मेरे बेटा तो बहुत दूर है,
1: अच्छा।
0: उसको फेमस नहीं होना है, उस वो
1: जी
0: बिल्कुल ही अलग सोचता है। और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की हैं,
1: जी
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने,
1: जी
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
1: हाँ, उस
0: तो
1: समय वो चल
0: फिर
1: नहीं
0: वो
1: पाई।
0: उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीज़ें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है, तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं,
1: मतलब
0: तो
1: उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता,
0: नहीं मैं करती भी नहीं, क्योंकि
1: मेहनत
0: जब
1: करो अपनी,
0: हाँ अपनी मेहनत करो।
1: ये बहुत अच्छी बात है, उनको
0: क्योंकि मैंने
1: अपने
0: अपने लिए
1: से
0: कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी।
1: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूं, तो मैं समझ रही हूं कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
1: अच्छा
0: हाँ तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30,
1: जी,
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई अच्छा तो बोले 100%,
1: हाँ
0: अब देखते हैं क्या होता
1: जी बिल्कुल होगा,
0: है।
1: आपने कह दिया, सोच लिया, और
0: हाँ
1: विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं, ऐसा
0: हाँ ऐसा
1: हम मान
0: है,
1: के चलते हैं।
0: चलिए
1: बिल्कुल, ये
0: ठीक
1: जगह
0: है।
1: बड़ी
0: हाँ
1: बड़े पवित्र लोग यहाँ पर
0: हाँ
1: आए हैं।
0: हाँ
1: आप जानते हैं कि यहाँ पर
0: हाँ
1: अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ
0: हाँ
1: रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है
0: अच्छी
1: यहाँ
0: होती
1: की।
0: है। हाँ लेकिन एक चीज़ बता रही हूँ मैं
1: जी
0: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं ना, बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए लाइफ के, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ।
1: ऊर्जा सकारात्मक
0: हाँ
1: है।
0: वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है,
1: हाँ
0: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में हैं, या मुझे फ़ोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं

0: जी हूँ या मर जाऊं।
1: अरे
0: हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीज़ें हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था।
1: क्या बात है।
0: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा ले दें, हमारा एक गाना जो है तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई हैं तो कुछ गाने हम
0: मैं
1: भी सुन लें।
0: कोशिश करती हूँ। चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है
1: जी।
0: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है
1: जी।
0: उनका ही गाना गा देती हूँ
1: जी।
0: देखो

करता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव।

0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं।
0: जी
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम
0: ध्यान
1: ये
0: होता है।
1: ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी

0: बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
1: और बचता कभी नहीं
0: बचता भी नहीं है, और कभी क्रेप भी नहीं करती माएं
1: जी।
0: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई
1: जी।
0: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि हाँ। आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है।
1: हाँ।
0: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक कच्चे धागे करके।
1: अच्छा।
0: और साड़ियाँ, वीव्स वगैरह, मैं चाहती सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है ये, ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें, तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है, कैसी है पहेली,
1: जी
0: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की।
1: अच्छा।
0: बहुत सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है,
1: अरे वाह,
0: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो
1: क्या बात
0: मैं
1: है।
0: चाहती हूँ कि ये सब देखें।
1: फिल्म है कैसी है पहेली,
0: कैसी है पहले,
1: जरूर से हम
0: हाँ
1: सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है।
0: हाँ
1: और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आएं, आप वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
0: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
1: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा लगता है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: लड्डू पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को समर्पित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सौरभ कुमार।

0: आज युवाने सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी युवा दोस्त अर्पिता का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप भी मेरी तरह एकदम स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों, बिना देर किए बताते हैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे आज के विशेष विषय अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर। इसके साथ डेली ट्रिविया एंड फन फैक्ट्स में देंगे रेडियो से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ। वहीं कार्यक्रम के अगले स्तंभ में गीतों भरी कहानी में कहानी के साथ साथ गीतों का होगा सिलसिला। वहीं हमेशा की तरह करंट अफेयर्स पर भी आपको अपडेट करेंगे। आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आने वाले 30 मिनट बेहद खास होने वाले हैं, इसलिए आप बने रहे मेरे साथ यानी आपके रेडियो दोस्त अर्पिता के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जिसका विषय है आलू। सोचिए दोस्तों, जिस आलू को आप और हम आए दिन किसी ना किसी सब्जी के साथ मिलाकर खा लेते हैं, उस आलू के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस आलू दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जो लगभग हर रसोई की शान है, हर उम्र के लोगों की पसंद और जिसे सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलू की। हर वर्ष 30 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को आलू के पोषण, खेती, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका में उसके योगदान के बारे में जागरूक करना है। आलू की शुरुआत दक्षिण अमेरिका के एंडस पर्वत क्षेत्र से हुई थी। 16वीं शताब्दी में यह स्पेन के रास्ते यूरोप पहुँचा और पूरे विश्व में पहुँच गया। भारत में आलू का आगमन लगभग 17वीं शताब्दी में हुआ और आज ये हमारे घर का हिस्सा बन चुका है। आलू की खेती में किसानों को अच्छा उत्पादन मिलता है और यह कई किस्मों में आता है जो अलग अलग मौसम में उगाई जा सकती है। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी, पोटासियम, फाइबर और कई तरह के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे, अधिक तला हुआ आलू सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए ताकि सेहत को नुकसान ना हो। आलू की अलग अलग रेसिपी जैसे पराठे, चिप्स, सब्जी हर किसी को पसंद आती है। भारत में आलू किसानों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। आधुनिक भंडारण तकनीक से किसान अपनी उपज को लंबे समय तक रख सकते हैं, जिससे उसे उचित मूल्य मिलता है। दोस्तों, आलू से जुड़े उद्योगों में रोजगार भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए किसानों को बेहतर समर्थन और सुविधाएं देना जरूरी है ताकि आलू उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करे। दोस्तों, यह थी आलू दिवस पर कुछ जानकारियां। अब आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई उन्हें पैसे ना भेजे और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देख के हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: दोस्तों, इस अंतराल के बाद बारी है डेली ट्रिविया एंड फन फैक्ट्स को जानने की। आज के डेली ट्रिविया में हमारा सवाल है, विविध भारती को और किस नाम से जाना जाता है। इसका जवाब आप हमें अभी मेल करें हमारे मेल आईडी phair@gmail.com पर। दोस्तों, अब बारी है आज के फन फैक्ट्स की। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द ब्रॉडकास्टिंग असल में कृषि से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब था बीज को बिखेरना। तो दोस्तों, यह थी रेडियो से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अब बारी है कार्यक्रम के अगले स्तंभ गीतों भरी कहानी की ओर बढ़ने का। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी है नम्रता और जय की। तो दोस्तों, यह है कहानी दो दिलों की, दो दोस्तों की और दो परिवारों के मिलन की। कॉलेज का पहला दिन, नई किताबें, नए दोस्त और ढेर सारी नई उम्मीदें। इसी भीड़ में नम्रता की मुलाकात हुई जय से। जय पढ़ाई में तेज और स्वभाव से बहुत शांत था। जय हमेशा अपनी मेहनत और संस्कारों पर विश्वास करता था, जबकि नम्रता हसमुख और सबकी मदद करने वाली लड़की थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई।

नम्रता एक अच्छे और ऊंची जाति वाले परिवार की लड़की थी। उनके पिता समाज में काफी सम्मानित माने जाते थे। घर में अनुशासन और समाज के इज्जत को सबसे ऊपर रखा जाता था। वहीं जय और नम्रता की गहरी दोस्ती को देख कॉलेज में हर कोई उसकी दोस्ती की मिसालें देने लगा था। लेकिन जय के मन में हमेशा एक डर रहता था। वह जानता था कि नम्रता और उसका समाज अलग है, उसकी जाति अलग है। वह कभी भी नम्रता के लायक नहीं बन सकता, और शायद यही वजह थी कि वह अपने दिल की बात कभी खुल के नहीं कह पाता था।

0: दोनों की दोस्ती को एक साल बीत गए। कॉलेज खत्म हुआ, जय की नौकरी दूसरे शहर में हो गई। अभी भी दोनों में खूब बातें होती थी। भले दोनों एक दूसरे से दूर थे, पर एक दूसरे को हर वक्त याद करते रहते थे। जय और नम्रता की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि वह दोनों एक दूसरे को अपनी फोटोज़ भी भेजा करते थे। नम्रता हमेशा जय को याद करती और जय भी उसे बहुत याद करता था।
1: मैं यहां, तू वहां, जिंदगी।

नम्रता ने एक दिन जय से पूछा, जय तुम अपने दिल की बात खुलकर क्यों नहीं करती? जय ने कहा, कुछ बातें जितनी दूर रहे उतनी अच्छी होती है। नम्रता ने कहा, पर दोस्ती में दूरी कैसी? जय मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे की उदासी नम्रता ने महसूस कर ली थी।

समय बीत चुका था, दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। एक दिन कॉलेज मीटअप पार्टी के बाद जय ने कहा, अगर कभी तुम्हारे घर वालों को मेरे बारे में पता चल गया तो शायद वो कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। नम्रता ने कहा, क्यों नहीं करेंगे? तो जय ने कहा, क्योंकि तुम्हारा समाज और मेरा समाज अलग है। तुम्हारे घर वाले ऊंच नीच मानते हैं और मैं नहीं चाहता नम्रता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हो। नम्रता कुछ पल शांत रही, फिर उसने जय का हाथ पकड़ा। नम्रता ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने पापा से ज़रूर बात करूंगी। जैसे ही नम्रता के पिता को इस रिश्ते के बारे में पता चला, पिताजी ने साफ साफ इस रिश्ते के लिए मना कर दिया और पिताजी ने नम्रता को भी बहुत खड़ी खोटी सुनाई। नम्रता कहती रही कि जय बहुत अच्छा इंसान है, पर उसके पिताजी समाज, इज्जत और जाति का हवाला देकर उसे बहुत सुनाए। उस दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। नम्रता के पिताजी ने नम्रता को जैसे मिलने तक के लिए मना कर दिया। ये बात सुनकर इधर जय भी टूट चुका था।

दिन गुजरते गए, नम्रता चुप चाप रहने लगी थी, उसकी मुस्कान कहीं खो गई थी। एक दिन अचानक नम्रता के पिता की तबीयत खराब हो गई। घर में कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था। नम्रता घबरा गई। उसने सबसे पहले जय को फोन लगाया। जय, पापा की तबीयत बहुत खराब है। जय बिना पल गवाए अस्पताल पहुंचा। पूरी रात उसने डॉक्टर, दवाइयों और हर ज़रूरत का ध्यान रखा। डॉक्टर ने जय को कहा कि अब मरीज खतरे से बाहर है, तुम चिंता मत करो। तब जाकर कहीं जय को चैन मिला। नम्रता के पिताजी ये सब देख रहे थे। जिस लड़की को वह अपनी जाति, अपने समाज, अपनी संपत्ति की वजह से ठुकरा रहे थे, वही आज बिना किसी शिकायत के उनका साथ निभा रहा था। अगले सुबह नम्रता के पिता ने जय को बुलाकर कहा कि मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जाति से पहचाना, लेकिन आज समझ आया कि असली पहचान इंसानियत और संस्कार से होते हैं। जय ने कहा कि अंकल, मैं सिर्फ नम्रता को खुश देखना चाहता हूँ। और नम्रता के पिता ने दोनों की शादी के लिए मान गए। घर में शादी की तैयारियाँ शुरू हुई। नम्रता के हाथों में मेहंदी और जय के आँखों में खुशी के आंसू थे। दोनों की शादी हुई। जय ने नम्रता की आंखों में देखते हुए कहा, देखो नम्रता, आखिर हमारा प्यार जीत गया। नम्रता ने प्यार से कहा, जय, जब इरादे सच्चे हो तो समाज की दीवारें टूट ही जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी नम्रता और जय की कहानी, जो हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसकी जाति नहीं, उसका व्यवहार, संस्कार और प्यार होता है। दोस्तों, इस कहानी के बाद अब बारी है आज के करंट अफेयर्स पर आपको अपडेट करने की। तो आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने, कॉलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता को, अधिवक्ता मोहना सहित 5 नए न्यायाधीशों की सिफारिश कर दी है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। अपनी रेडियो दोस्त अर्पिता को दे इजाज़त। धन्यवाद।

युवाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथी।

0: फिल्म संगीत कार्यक्रम कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश क्रेश और बाल्टी बॉय।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर और फिल्म है लेकिन।

लाल दुपट्टा मलमल का। इस फिल्म का गीत अब आपको हम सुनवा रहे हैं उदित नारायण एवं अनुराधा पौडवाल के युगल स्वर में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार आनंद मिलित।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है फिल्म संगीत कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:55 हुए हैं। आइए जानते हैं आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ देर बाद संध्या 6:00 आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। प्रस्तुत करता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। प्रादेशिक समाचार रांची से आप सुन सकते हैं संध्या 7:10 पर आप सुनेंगे लोकगीत कार्यक्रम। गायक कलाकार होंगे केदार प्रसाद कुशवाहा। संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पटना से। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं संध्या 7:47 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी आप सुनेंगे 7:52 पर। कलाकार होंगे अभय कुमार सुमन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनते हैं रात्रि 8:00।

समाचार संध्या का प्रसारण समय है रात्रि 8:45 इवनिंग न्यूज आप सुनते हैं रात्रि 9 बजे और उर्दू में समाचार होंगे रात्रि 9:15 पर। युवा भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे स्मिता मुकाशी का ख्याल गायन। हिंदी में समाचार का प्रसारण समय होगा रात्रि 11 बजे और रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

ये है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:50 पर। खेत खलिहान कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 5:55 पर। हिंदी में समाचार आप सुनते हैं प्रातः 6:00। चिंतन मनन अंतर्गत आप सुनेंगे सचिन कुमार की वार्ता गांधी का धर्म। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनते हैं प्रातः 6:10 पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अंतर्गत आप सुनेंगे शिशुओं में फेफड़ों का संक्रमण विषय पर भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर नवजीवन एवं भेंट करता होंगे कुसुमाकर दुबे। प्रातः 6:40 पर आप सुनते हैं रामचरित मानस गान, आप ये सुनेंगे सुरेश वाडकर की आवाज़ में। मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला का प्रसारण समय है 7:07। इसके अंतर्गत आप जानेंगे मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां और आज का इतिहास। रसरंग के कलाकार होंगे ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी। हिंदी वार्ता में आप सुनेंगे गणेश प्रसाद झा की वार्ता स्वच्छता एक सामाजिक जिम्मेदारी। समाचार प्रभात का प्रसारण समय है 8:00। मॉर्निंग न्यूज़ आप सुनते हैं 8:15 पर। खबरनामा का प्रसारण समय है 8:30 पर। नगमे नए पुराने आप सुनेंगे 9:06 पर। बाल मंजोशा कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। प्रस्तुत करता होंगे श्री पार्वती के प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी आप सुनते हैं 10:00। लोकगीत आप सुन सकते हैं 10:30 पर। कलाकार होंगे चंद्रशेखर मिश्र। दिन में 11:00 आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का विशेष प्रसारण। 11:35 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का संस्कृत भाषा में अनुवाद।

दिन में 12:05 पर आप सुनेंगे विज्ञानवाणी कार्यक्रम, स्वर सहयोग पीयूष आनंद का होगा, प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 12:30 पर स्वर संगम कार्यक्रम के कलाकार होंगे पंडित भजन सोपोरी। लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग आप सुनते हैं दिन में 1:00, कलाकार होंगे मिथिलेश महाराणा। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे, आपके पत्रों और ईमेल पर यह आधारित होगा, जो कि आप सुनेंगे दिन में 2:30। हमारी सभा जो सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम की शुरुआत होती है संध्या शाम में 5:00 से युवाणी कार्यक्रम के साथ, और संध्या 6:00 आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे रांची से संध्या 7:00। 8:15 पर आप सुनते हैं रजनीगंधा कार्यक्रम। ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण समय और उनका संक्षिप्त विवरण। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, गढ़ में संध्या के 6:00 हैं, प्रस्तुत है ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: स्वागत है आप सबों का आपके लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। सबको पन्नू का नमस्कार,
1: साथ में सभी को अन्नू का भी नमस्कार। पन्नू भाई आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार अन्नू भाई, और क्या हाल है?
1: हाल समाचार तो सब ठीक ही है पन्नू भाई, लेकिन देखिए पिछले 2-3 दिनों से मौसम में अचानक बदलाव के कारण जो है हमारे किसान भाई को खास करके ज़्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, और इसके साथ साथ बिजली चली जाने के कारण, तेज हवाओं में जो है बिजली चली जाने के कारण जो है जीवन भी थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया।
0: जी जी अन्नु भाई, क्या होता है कि मौसम का मिजाज कब बदल जाएगा कहना मुश्किल है। पिछले दिनों आई चक्रवाती तूफान और तेज आंधी बारिश ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया।
1: बिल्कुल,
0: इस प्राकृतिक आपदा में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अन्नु भाई।
1: जी,
0: होता क्या है कि जब तेज आंधी आई तो सब कुछ बिगड़ गया, खास करके बिजली की व्यवस्था चरमरा गई, और बिजली की हमारा जो है जीवन का आधार बन गया है।
1: बिल्कुल,
0: वो क्या है, बिना बिजली के हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं।
1: जी,
0: तो ऐसे में बिजली के बिना तो हमें दिक्कत हुई, साथ साथ कई झोपड़े, घर, टीना, चदरा, कितना का नुकसान हुआ कहना मुश्किल है। इसलिए हमें प्राकृतिक आपदा से सामना करने का साहस भी रखना पड़ेगा।
1: जी, और इस प्राकृतिक आपदा के लिए कहीं ना कहीं हम मनुष्य भी जिम्मेदार हैं पन्नू भाई।
0: जी,
1: क्योंकि
0: जी,
1: लगातार वृक्षारोपण, वृक्ष के कटने के कारण और तेजी से जनसंख्या फैलने से भी जो है कहीं ना कहीं वृक्षारोपण के कमी के कारण जो है इतना तेज चक्रवात और तूफान जो है हमें देखने को मिलती है।
0: जी, जी,
1: और इस प्रकृति के प्रकोप के कारण बाद में हमें ही नुकसान उठाना पड़ता है।
0: और क्या होता है अनु भाई कि कभी कभी हमें गांव की खबर बहुत देरी से शहर तक पहुंचती है।
1: जी,
0: नुकसान जो है उसकी खबर जो है हमें देरी से पहुंचती है तो उसकी भरपाई भी समय से नहीं हो सकती है।
1: जी,
0: लेकिन खबर जब समय से पहुंचती है तो हमारी सरकार, हमारा प्रशासन सब सजग रहता है, कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा इसकी भरपाई कर सके।
1: बिल्कुल,
0: और खबर की बात है तो जानते हैं ना अनु भाई कि हमें खबर पहुंचाने के लिए एक दूसरे का सहयोग जरूरी होता है।
1: बिल्कुल,
0: एक दूसरे जगह जानकारी पहुंचाने के लिए अपना जो संचरण शक्ति है उसके भी मजबूत करना पड़ता है।
1: जी,
0: और ये भी जानिए अनु भाई कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जा रहा है।
1: बिल्कुल, आज ही के दिन पन्नू भाई 30 मई को, यानी कि आज ही के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुरुआत 1826 ईस्वी में की गई थी। और 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का भी प्रकाशन हुआ था, जिसके संस्थापक और संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे।
0: जी जी जी जी, देखिए अनु भाई क्या है कि हमारे देश में खबर पहुंचाने की बात बहुत पहले से चली आ रही है।
1: जी,
0: प्राचीन काल से यह परंपरा आ रही है।
1: जी,
0: जो अब भी निर्बाध गति से चालू है, और हमारे देश में पत्रकारिता का अनुभव सदियों पूर्व किया जाता रहा है।
1: जी,
0: किसी न किसी रूप में सनातन काल से ही कलम साधना की परंपरा हमारे देश में रही है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ कलम साधना का ही प्रतिफल है। और कलम न होती तो शायद संसार में ज्ञान का अस्तित्व ही न होता।
1: बिल्कुल,
0: ज्ञान न होता तो फिर क्या होता, इस बात का अंदाजा हम लोग सहज लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और आपने चर्चा किया 30 मई 1826 को कलकत्ता से हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन हुआ था, और तब से ही हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी पत्रकारिता की आधारशिला रखने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंड मार्तंड के प्रथम चरण में, प्रथम अंक के प्रथम पृष्ठ पर आनंद व्यक्त करते हुए लिखा था कि आद्य पत्रकार देवर्षि नारद की जयंती के शुभ अवसर पर यह पत्रकारिता प्रारंभ होने जा रही है।
1: बिल्कुल
0: जी, जी।
1: और पन्नू भाई उदंत मार्तंड का जो है वो अर्थ होता है समाचारों का सूर्य।
0: जी जी,
1: और
0: जी।
1: हिंदी पत्रकारिता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: जी
1: थी।
0: जी जी जी,
1: खास तौर पर बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी
0: हुँ।
1: और अन्य समाचार पत्रों ने भी बड़ी भूमिका निभाई।
0: जी जी जी जी,
1: पत्रकारों ने अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना भी की थी, और इसके लिए वे हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के लिए जो है महत्वपूर्ण रूप से उनकी जो है योगदान लिए थे, और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागरूकता भी हिंदी पत्रकारिता और लेखनी के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन जो है बखूबी किए थे।
0: जी, जी जी जी,
1: और विश्व पत्रकारिता हिंदी पत्रकारिता दिवस की जो है गौरवशाली परंपरा, उसके संघर्ष और समाज के प्रति योगदान को याद करने का यह बेहतर अवसर होता
0: जी,
1: है पन्नू भाई।
0: जी, जी, जी, जी।
1: और यह दिन हमें निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ और जनहितकारी पत्रकारिता ने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना अहम योगदान दे रही है।
0: जी जी, और इसका भी तो कई एक काल रहा है। 1826 से 1867 तक का समय हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभिक काल माना गया है।
1: बिल्कुल।
0: इस काल में कई पत्रकारिताएं प्रकाशित हुई और 1867 से 1900 तक का समय भारतेंदु युग के नाम से पत्रकारिता जगत में प्रसिद्ध रहा है। और 15 अगस्त 1867 को कवि वचन सुधा मैगजीन निकालकर भारतेंदु ने पत्रकारिता जगत में नई क्रांति को जन्म दिया। इस युग में लगभग 300 समाचार पत्र पूरे देश में प्रकाशित हुए और 1900 से 1920 तक का समय पत्रकारिता क्षेत्र में द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के प्रखर पत्रकार रहे। सरस्वती मैगजीन एवं भारत मित्र इस दौर की चर्चित पत्रिका रही। 1920 से 1947 तक गांधी युग के समय में समाचार पत्रों की बाढ़ सी आ गई। महात्मा गांधी ने कहा था कि पत्रकारिता का पहला उद्देश्य जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना, उनके वांछनीय उद्देश्यों को जागृत करना और सार्वजनिक दोषों की निर्भीकता पूर्वक प्रकट करना है। अर्थात समाज को बदलना पत्रकारिता का मुख्य दायित्व रहा है। और हमारा सौभाग्य है अनु भाई कि कलम की ताकत आज भी सर्वश्रेष्ठ है और आजादी के जंग से लेकर भारत में लोकतंत्र के निर्माण तक हिंदी पत्रकारिता का अतुलनीय योगदान रहा है।
1: बिल्कुल पन्नु भाई, आज चूंकि विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस है और इस मौके पर पत्रकार उदय कांत झा से बातचीत पर आधारित हम एक बायोध्वनिंकन पर आधारित बातचीत सुनते हैं। संकलन करता है प्रवीण कुमार मिश्र।
0: आप हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री उदय चंद्र झा। आपने अब तक देश के कई जाने माने पत्र पत्रिकाओं से जुड़कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों को सामने रखा है। इन्होंने अब तक सर्च लाइट, आर्यावर्त, पाटलिपुत्र टाइम्स, प्रभात खबर, आज, दैनिक जागरण व नई बात अखबार से जुड़कर अपनी लगातार सेवा दी है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि यह दिवस क्या है और इस दिवस पर हम क्या कर सकते हैं। जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार
0: जी, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है, आप इस दिवस के बारे में क्या समझ रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए?
2: हिंदी पत्रकारिता हमारे देश की मुख्य रीढ़ आज के दिन भी है। उदन मार्तंड से शुरुआत हुई थी पत्रकारिता की। दुखद यह है अभी कि वर्तमान दौर में पत्रकारिता में भाषाई शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता है। जब मैंने 1979 में पत्रकारिता शुरू की थी उस समय दो ही बातें होती थी कि भाषाई शुद्धता और राजनीतिक रूप से निष्पक्षता। वर्तमान दौर में निष्पक्षता का विशेष ख्याल नहीं रखा जाता है और भाषाई शुद्धता तो लगभग न के बराबर रह गई है। पहले अखबारों के मुखपृष्ठ पर आपराधिक खबरों को स्थान कम मिलता था, रचनात्मक और सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी जाती थी, लेकिन बीते 2.5 से 3 दशक से अखबारों के मुखपृष्ठ पर आपराधिक खबरों को प्रमुखता दी जाती है, जिससे समाज में एक नकारात्मक सोच आती है।
0: जी, और जैसे कि इसका इतिहास हम पहले देखते हैं, आज़ादी के आंदोलन में अखबार की पत्रकारिताओं की प्रमुख भूमिका रही है। आज़ादी के बाद की जो स्थिति बनी उसमें भी कई एक परिवर्तन देखने को मिला, तो आज़ादी के बाद से अब तक की क्या स्थिति रही और अभी और क्या संभावना देख रहे हैं आप इसमें?
2: आज़ादी के पूर्व की पत्रकारिता को मैं विशेष ज्ञान अध्ययन के रूप में नहीं देखा है, लेकिन आज़ादी के बाद जो पत्रकारिता चली उसके शुरुआती दौर में पत्रकारों का मुख्य दायित्व होता था सरकारों को सुझाव देना और समाज के लिए अपनी जागरूकता सिद्ध करना। मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, सामाजिक सेवा पत्रकारिता का एक रूप था। उस समय पत्रकारिता कमाई का जरिया ना होकर एक स्वैच्छिक सामाजिक सेवा हुआ करती थी। अब वर्तमान दौर में जो नए पत्रकारों की नई पीढ़ी आई है उनके लिए मुख्य उद्देश्य उनका सामाजिक सरोकार से ज़्यादा निजी सरोकार है। और हो सकता है क्षमा करें किसी खास वर्ग को मैं लक्षित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस दौर में ऐसी मतलब स्थितियाँ आ गई हैं कि पत्रकारों का जो सम्मान था पहले वह सम्मान वर्तमान दौर में नहीं मिल रहा है उन्हें। कारण यह है कि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है।
3: हम लोग देखिए नकार

0: नहीं जा रहा है। अभी भी लगभग 60% पत्रकार ऐसे हैं जो समाज के विषय में सोचते हैं, समाज को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं
1: जी जी
0: और अपनी एक छवि बनाते हैं
1: जी जी
0: ऐसी स्थिति में तकनीकी के साथ चलना उनकी मजबूरी है। वर्तमान में अखबारों की जो खासकर प्रिंट मीडिया, इस पर लोगों की निर्भरता कम हो गई है। नई पीढ़ी के लोग मोबाइल और AI से खबरों का संकलन करते हैं, जो विश्वसनीय नहीं होते हुए भी उन्हें ज़्यादा भाता है। सवाल यह है कि वर्तमान पीढ़ी को भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि विश्वसनीय खबरों के लिए और पठनीय सामग्री के लिए उन्हें प्रिंट मीडिया का सहारा फिर से लेना चाहिए।
1: कुछ वैसे पत्रकार जिनका भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में इतिहास रहा है, वो स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, जिनका हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कुछ वैसे पत्रकारों के बारे में बताएं जिनको हम लोग अवलोकन करें, उनके विचारों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें।
0: जी, भागलपुर स्तर पर मुकुटधारी अग्रवाल जी थे, जिनका एक अपना ये था, उनकी एक अपनी अलग पहचान थी उनकी। सुल्तानगंज से सत्यनारायण झा जी थे, जो बिहार राष्ट्र संघ के अध्यक्ष भी रहे लंबे समय तक। मुंगेर से आचार्य लक्ष्मीकांत जी, और इस तरह के अनेक पत्रकार हुए जिन्होंने अपने एक आदर्श प्रस्तुत किया। क्षेत्र में लोग उन्हें अपना अनुकरण मानते थे, अनुकरण के लिए योग्य मानते थे। वर्तमान दौर में भी बहुत से लोग हैं, जैसे कुछ नाम हैं विकास पांडे, अंजनी कुमार विशाल ने एक नई पत्रकारिता की दिशा दी थी जब पॉजिटिव टाइम्स अखबार में थे, वो निर्भीक पत्रकारिता की बेवाक लेखन थी, लिखनी थी उनकी।
1: तो ये आप कहना चाहेंगे कि जो भी स्थानीय पत्रकार हैं उनको भी आप आत्मसात करें और उनके किए गए कार्यों को आप उदाहरण स्वरूप अपने कार्यों में शामिल करें।
0: हाँ, नई पीढ़ी के पत्रकारों को मैं ये कहूँगा कि उन्हें यह जानकारी प्राप्त करनी जुटानी चाहिए कि अपने क्षेत्र के उनसे पहले के वरिष्ठ पत्रकार कौन रहे और उनसे दिशा निर्देश क्या मिल सकता है। संपर्क करना चाहिए उनको, अगर आगे बढ़ना है इस क्षेत्र में तो दिशा निर्देश लेने की आवश्यकता उन्हें है। अपने पूर्ववर्ती पत्रकारों से उन्हें सीखना चाहिए कि समाचार संकलन केवल करना पत्रकारिता नहीं है। समाचार संकलन के साथ साथ हम अपने साथ साथ समाज को क्या दिशा निर्देश दे सकते हैं और इसके लिए हम किन तरीकों को अपना सकते हैं, अपनी खबरों में उसे कहाँ स्थान दें, कैसे समाहित करें, यह सीखना चाहिए।
1: जी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पन्नू भाई, आपने पत्रकार उदयकांत झा से बातचीत जो की, निश्चित रूप से इस बातचीत के माध्यम से हमारे श्रोतागण बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे।
1: जी जी,
2: और अब चूंकि मौसम में बदलाव आ ही रहा है पन्नू भाई, और धीरे धीरे अब खेती बाड़ी भी शुरू होगी, और खेती बाड़ी के साथ साथ जो है देवी की भी आराधना आवश्यक होती है, संध्या काल का समय भी है, तो हम लोग भी एक प्यारा सा देवी गीत सुन लेते हैं।
1: जी जी, आइए हम लोग सुनते हैं।

0: जी बहुत अच्छा भजन अभी हम लोगों ने सुना अनु भाई
1: जी।
0: और हमारा जो परिवार है उसमें हमारे बुजुर्गों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है अनु भाई।
1: बिल्कुल,
0: क्या है कि बुजुर्ग ही हमारे गार्जियन होते हैं
1: जी। वो उनका अनुभव और उनका जो है ज्ञान हमें जीवन में हमेशा आगे दिशा में जो है मार्ग दिखाते हैं
0: जी, जी, जी,
1: और अपने जीवन का बड़ा हिस्सा और परिवार के समाज के निर्माण के लिए भी हमारे बुजुर्गों का होना अति आवश्यक है।
0: जी, जी, जी।
1: इसलिए हम अपने बुजुर्गों के प्रति हमारा क्या दायित्व है, इस विषय पर हम लोग पन्नू भाई विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं वार्ताकार बाबूलाल हरिजन जी से।
0: जी जी।
2: बुजुर्गों के प्रति हमारा दायित्व, बुजुर्गों का सम्मान हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इनके सम्मान सुरक्षा से हम आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मशांति के साथ साथ अपने कर्तव्य पालन की अनुभूति होगी। बुजुर्गों की सेवा सुरक्षा और इनकी लंबी आयु की कामना करना हमारी संस्कृति है, कर्तव्यपरायणता है, कोई परंपरा नहीं। प्राचीन काल में बुजुर्गों की सेवा सुरक्षा, खान पान और रख रखाव पर परिवार तत्पर रहते थे। इनके आशीर्वाद से लोग सुखी रहते थे, लोग इनके साथ मधुरता का प्रयोग करते थे। यही कारण था कि इनकी आत्मा में परिवार के प्रति शांति और सद्भाव बना रहता था। लेकिन बदलते समय के साथ बुजुर्गों की सेवा में गिरावट आ गई है। विश्व स्तर पर वृद्धों की स्थिति का आकलन करने वाले आंकड़ों के आधार पर भारत में वृद्धों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। परिवार एवं समाज में इनकी उपेक्षा एवं तिरस्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। परिवार के लोग बूढ़े एवं वृद्धाओं को बेकार एवं बेरोजगार समझकर इनका अपमान कर रहे हैं। एक बात मुझे समसामयिक याद आ रही है, बूढ़ों का कहना है, जिसको दी थी मैंने जुबान वह हो गया आज जवान, कहते हैं मुंह पर लगाओ ताला, इसी में है तुम्हारा भला, बूढ़ा है घर का कूड़ा जैसे टोकरी का आम सड़ा। अभी भी बुजुर्ग समाज और परिवार की रीढ़ है। अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह करने में अपने अनुभव की बातों से परिवार समाज को प्रेम और सद्भाव से परस्पर सामंजस्य स्थापित करते रहते हैं। अगर हम बुजुर्गों के कथनानुसार चलें तो एक उन्नत परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज के अगर लंबी आयु तक जीवित रहते हैं तो हम उनसे अनुभव का लाभ ले सकते हैं। जिसने 80 वर्षों की रीतियों की अठखेलियाँ देखी है वही हमारा सही मार्गदर्शक बन सकता है। हमारे बुजुर्गों में यह शक्ति मौजूद है, इनके हर आयाम पर हमें ध्यान देना होगा, सभी क्रियाकलापों को भली भांति समझना होगा, तभी हम बुजुर्गों की सुरक्षा कर सकते हैं। एक उन्नत परिवार और समाज की कल्पना के लिए वृद्धों की सेवा शुश्रूषा अनिवार्य है। वृद्धों का अपमान हमारे लिए ग्लानि और पाप है, जिसने कल हमारे सारी कठिनाइयों कुछ से जूझते हुए हमें पाला पोसा, शिक्षा दीक्षा, हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की, वह आज अपमान का शिकार हो रहा है। यह हमारी जिंदगी के लिए धिक्कार है। बढ़ते वृद्धाश्रमों की संख्या इस कटु सत्य की ओर संकेत करती है। वृद्धा हमारे देवता स्वरूप हैं, इस कुव्यवस्था में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बुजुर्ग अनुभव के पक्के श्रद्धा सम्मान के पात्र परिवार के बुजुर्ग मूल सदस्य एवं परिवार समाज की अमूल थाथी होते हैं। इनकी देखरेख हमारा पावन कर्तव्य और जरूरत हुई। आज जब संयुक्त परिवार विखंडित हो रहे हैं, परिवार का ताना बाना बिखर रहा है, ताना बाना एक स्ट्रक्चर है जो दोनों मिलकर नवीन एवं संगीन वस्तु का निर्माण करता। अगर आज बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज में अपमानित होते हैं तो सामाजिक ताना बाना नष्ट हो जाएगा। आज एकल परिवार का चलन जोरों पर है, बच्चों का विकास अवरुद्ध हो रहा है। ऐसे में परिवार में बुजुर्गों के महत्व को समझने की जरूरत है। यह सत्य है कि बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर पूरी क्षमताओं के साथ काम करने में सक्षम नहीं रहता है और शरीर पर अशक्तता हावी होने लगती है। यह हर इंसान के लिए सत्य है कि सबको एक दिन बुढ़ापे की उस अवस्था से गुजरना पड़ता है। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि इस अवश्यंभावी प्रक्रिया का सम्मान करें और बुजुर्गों को इस अवस्था का सामना करने में आवश्यक सहयोग देने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। बंधुओं, सभी युवाओं एवं प्रौढ़ों से मेरी अपील होगी कि इस वृद्धावस्था पर उपहास न करें और इनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गरिमापूर्ण उपस्थिति देकर अपनी कर्तव्य पूरा करें। दादा दादी नाना नानी की भूमिका में इस आधार पर अपना विलक्षण योगदान दे सके हैं। आज की भाग की जिंदगी में नौकरी पेशा करने वाले माता पिता के पास बच्चों के लिए अधिकतम समय नहीं होता है। ऐसे में बच्चों के विकास के लिए घर में बूढ़े बुजुर्गों की गोद एक उर्वर भूमि का काम करती है, जिसमें बचपन व खूबी पनप सकता है। बुजुर्ग अनुभव के पक्के चलते फिरते पुस्तकालय है। बुजुर्ग नई पीढ़ी के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बुजुर्गों का देखभाल बच्चों के भविष्य का देखभाल होगा। बुजुर्ग हमारे प्राणाधार होते हैं। इनका योगदान, कर्तव्य और अनुभव नई पीढ़ी के लिए स्मरणीय, वंदनीय और चंदनीय है। इनके अच्छे स्वरूप स्वास्थ्य से परिवार में खुशियाँ आती है, इसलिए बूढ़ों की सेवा ईश्वर की सेवा है। इनका आशीर्वाद पुष्पित और फलवित है। इस कठिन सामाजिक और पारिवारिक समस्या के समाधान के लिए हम युवाओं को आगे आना होगा, तभी समाज में बुजुर्गों का सम्मान संभव है। श्रवण कुमार की पितृ भक्ति, मातृभक्ति की सेवा कर जिस तरह श्रवण कुमार उरीन हो सकते हैं, उसी तरह हमें भी समाज में मातृ पितृ भक्ति कर उरीन होना चाहिए। कहा भी गया है, तीर्थ करत फल एक मिले, संत दरस फल चार, मात पिता सेवा करत मिले फल हजार। आज जो वृद्ध हैं, कल मेरे माता पिता, दादा दादी और नाना नानी थे और हमारे प्रथम गुरु भी थे। इन लोगों की सेवा मेरा धर्म कर्तव्य है। बुजुर्गों की सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। ऐसे में बुजुर्गों का कर्तव्य बनता है कि वे जीवन के अनुभवों से नई पीढ़ी को यथासंभव लाभ दें। बच्चों के साथ

0: बताने के लिए गुणवत्तापूर्ण समय निकाला। बच्चों की शिक्षा से लेकर उनको संस्कार संपन्न बनाने में अपना आवश्यक योगदान दें। ऐसा करने में उन्हें गहरी संतुष्टि व शांति मिलेगी और साथ ही जीवन की आपाधापी में बच्चों के माता पिता के लिए भी वे एक बहुत बड़ा संबल साबित होंगे। परिवार और समाज के लिए उपयोगिता के आधार पर जो सम्मान और गौरव का भाव मिलता है उसके लिए बुजुर्ग सहज रूप से अधिकारी बनेंगे। आज यह वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध तथ्य है कि 8 वर्ष आयु वाले बच्चे का 80% बौद्धिक विकास हो जाता है। अतः जीवन के इस प्रारंभिक वर्षों में बुजुर्ग बच्चों के भविष्य जीवन में सशक्त योगदान देने में सहायक हो सकते हैं। घर में पढ़ाई लिखाई के साथ वे बच्चों के साथ बाहर घूमने का समय निकाल सकते हैं, बच्चों के ज्ञान वृद्धि में पूर्ण सहयोग दे सकते हैं। समाज और परिवार में जब बूढ़े को सम्मान मिलेगा तो वे अपने जीवन की ढलती शाम को संतोषपूर्ण ढंग से बिता सकते हैं और नई पीढ़ी के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ वे थेपेड़ों के बीच टूटते बिखरते परिवार का प्रेम से जोड़ सकते हैं। इस तरह मैं निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि बुजुर्गों की सेवा से हमारा परिवार सुखी संपन्न रह सकता है और सामाजिक सम्मान बना रह सकता है। बूढ़ों का अपमान करने से समाज में हमें सम्मान नहीं मिल सकता है। बुजुर्गों का सम्मान देना, बड़ों का आदर करना हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी। अब लगे हाथों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संदेशों को सुन लेते हैं।
2: जी जी।

0: Akashvani at 90.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: AIR at 90.
1: जी, महत्वपूर्ण संदेशों के बाद हम लोग फिर से अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में।
2: जी जी जी।
1: और पन्नू भाई, देखिए, जब फसल अच्छी उपजती है तो हमारे किसान भाई जो है भी जो है वो अच्छी तरह से अपने कार्यों में लगे रहते हैं
2: जी, जी।
1: और मस्ती में झूमते भी हैं। उसी तरह से संगीत में भी जो है कई प्रकार की विधा होती है, उसमें एक झूमर भी होता है। तो हम लोग भी एक झूमर सुनकर अपने श्रोताओं के साथ थोड़ी जो है झूमने की कोशिश करते हैं।
2: जी जी, तो हम लोग भी आइए एक झूमर सुन लेना।
1: जी जी।

0: जी बहुत जी। अच्छा गीत अभी हम लोगों ने सुना।
1: अब हम लोग कुछ अपने श्रोताओं को और किसान भाइयों को मौसम सूचना दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: जी, जी जी मौसम के संबंध में जो जानकारी विभाग से प्राप्त हुई है उसकी चर्चा जरूर कर लिया जाए।
1: बिल्कुल, आगामी दिनों के दौरान यानी 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में 1 से 2 स्थानों पर गरज और चमक के साथ आंधी और यानी कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की और उसके साथ वर्षा होने की भी संभावना है। इसके बाद जो है मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है।
0: जी जी।
1: सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है।
0: जी।
1: पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की भी संभावना है।
0: जी।
1: वही हमारे किसान भाई जो इस समय आम की खेती जो किए हैं तो आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में स्थगित सिंचाई जो है वो आसमान साफ रहने पर ही करें।
0: जी।
1: और खाद कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें तो ज्यादा कारगर होगा।
0: जी जी।
1: खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित करें और कीटनाशक का छिड़काव भी आसमान साफ रहने पर ही करें।
0: जी।
1: जो किसान भाई चावल की खेती के लिए जो है अब बिचड़ा की रुपाई करेंगे कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद, तो लंबे अवधि वाले धान की किस्में जैसे कि सबौर श्री, सवर्णा सब प्रथम, राजश्री, राजेंद्र मुंसरी, राजेंद्र श्वेता, सवर्णा VPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी स्थापना जो है वो समाप्त साफ रहने पर ही करें।
0: जी, जी।
1: इसके साथ स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद का भी व्यवहार करें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से लेकर 1.5 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी तैयार करें। बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें तो ज्यादा कारगर होगा। बीज गिराने के पूर्व बीजोपचार अवश्य कर लें। वहीं जो किसान भाई मूंग की खेती इस समय कर रहे हैं तो मूंग और उड़द की फसल में रस चूस

0: शक कीट माहू, हरा फदुका और सफ़ेद मक्खी व त्रिष्ट कीट की निगरानी करें। बचाव हेतु जो है मेलाथियॉन 50 EC या फिर डाई मेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करने पर, आसमान साफ रहने पर ही यह छिड़काव करें तो ज़्यादा कारगर होगा। मक्का की खेती जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो मक्का की बुआई के लिए खेत की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 50 किलोग्राम पोटाश का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की जो किस्में हैं वे सुवान, देवकी, शक्तिमान प्रथम, शक्तिमान द्वितीय, राजेंद्र शंकर, मक्का तृतीय और गंगा 11 है। हमारे जो पशुपालक भाई हैं, खास करके जो गाय जो है पालते हैं, तो गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। इस समय सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य रूप से करें। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में अगर भूसा को फुला छोड़ देते हैं और 50 ग्राम खनिज मिश्रण उसमें और नमक मिलाकर दाना को खिलाते हैं तो इससे मवेशी ज़्यादा दूध देते हैं और उन्हें ज़्यादा जो है उनका मवेशी भी स्वस्थ और सुरक्षित भी रहता है।
1: जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आप किसान भाइयों को मिले। और हम लोग जहाँ तक खेती गृहस्थी की बात करते हैं तो खेती भी कई तरीके से हो रही है, जिसमें हम लोग रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। रासायनिक खाद के प्रयोग होने से लाभ तो ज़्यादा मिलता ही है, लेकिन कभी कभी उसका हानि भी हमको देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो रासायनिक खाद का उर्वरा शक्ति पर हमारा क्या प्रभाव पड़ता है, आइए हम लोग एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से इस पर कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। वार्ताकार हैं श्री अंशुमन कोहली।
0: बिल्कुल।
2: जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं, मृदा की जांच कराने से मृदा की उर्वरा शक्ति का पता चलता है। किसी मिट्टी जांच प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच करवाने के पश्चात आगे लगाई जाने वाली फसलों के लिए उर्वरकों की अनुशंसा भी प्राप्त की जाती है। इस अनुशंसा के अनुसार गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक तथा रासायनिक उर्वरकों का व्यवहार किया जा सकता है। प्रायः यह देखा गया है कि मिट्टी की जांच पर आधारित उर्वरकों की अनुशंसा के अभाव में किसान भाई असंतुलित रूप से उर्वरकों का व्यवहार करते हैं। उर्वरकों के असंतुलित व्यवहार के चलते मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है। साथ ही साथ यह अवधारणा उत्पन्न होती है कि रासायनिक उर्वरकों के लगातार व्यवहार से मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है। वास्तव में यदि रासायनिक उर्वरकों का वैज्ञानिक अनुशंसा के अनुसार समझबूझकर संतुलित व्यवहार किया जाए तो फसलोत्पादन में वृद्धि के साथ साथ किसान भाई अपनी मिट्टी को उपजाऊ एवं स्वस्थ रख सकते हैं। फसलों की सही बढ़वार के लिए विभिन्न पोषक तत्व आवश्यक हैं, जैसे कि नत्रजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर इत्यादि। सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाकर कुल 17 पोषक तत्व पौधों की सही बढ़वार के लिए आवश्यक माने गए हैं। अमूमन एक स्वस्थ मिट्टी में यह सभी पोषक तत्व एक संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। फसलोत्पादन के उपरांत अनाज और फसल अवशेषों के खेत से बाहर ले जाने पर जितनी मात्रा में पोषक तत्व खेत से कम हो जाते हैं उनकी भरपाई उर्वरकों अथवा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा की जानी चाहिए। आज के युग में बढ़ती जनसंख्या के पोषण हेतु आधुनिक कृषि के लिए रासायनिक उर्वरक एक आवश्यकता बन गए हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मानवता के लिए भुखमरी से निपटने हेतु एक वरदान सिद्ध हुआ है। हालांकि रासायनिक उर्वरकों के व्यवहार से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, इनके अत्यधिक एवं अंधाधुंध प्रयोग से ऐसा देखा गया है कि मृदा सख्त हो जाती है तथा उर्वरा शक्ति क्षीण होती जाती है। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से जलवायु एवं मृदा प्रदूषित होते हैं तथा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ जाता है। जब किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का व्यवहार करते हैं तब अधिकतर नत्रजन, फॉस्फोरस तथा पोटाश का ही प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप में

0: पाए जाने वाले अधिकतर पोषक तत्वों की इन उर्वरकों के व्यवहार से पूर्ति नहीं की जा सकती है। कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग संतुलित एवं टिकाऊ विकास के लिए एक गंभीर चुनौती है। एक बार और, रासायनिक उर्वरक अधिकतर किसी न किसी प्रकार के नमक होते हैं, जिनके प्रयोग से मृदा के पीएच एवं विद्युत चालकता पर काफी प्रभाव पड़ता है। इस कारण मृदा में पाए जाने वाले प्राकृतिक सूक्ष्मजीवी प्रभावित होते हैं तथा इनकी संख्या घट जाती है। यह मृदा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मृदा पर रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव को समझने हेतु यह समझना बहुत जरूरी है कि मृदा क्या है और मृदा जीवन और रासायनिक उर्वरकों के पारस्परिक संबंध क्या है। आज की रासायनिक और यांत्रिक कृषि मात्र निपुणता के साथ जैविक रूप से निष्क्रिय तथा भौतिक रूप से बिगड़ी हुई मृदा पर फसलोत्पादन करना भर है। यह एक महंगी व्यवस्था है जो मिट्टी को एक सहारा देने वाले माध्यम के रूप में ही देखती है। इस व्यवस्था के चलते समय के साथ फसलें रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के लाभ को कम दर्शाती हैं। इसी कारणवश किसान भाई सरकार की मदद, सब्सिडी इत्यादि पर अधिक आश्रित होते जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में यह सवाल अनायास ही मन में आ जाता है कि क्या रासायनिक और जैविक कृषि के मिश्रण से उत्पादन की लागत को कम करते हुए अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है? पौध पोषण और फसलोत्पादन को मात्र रासायनिक उर्वरकों और मिट्टी में जीवन पर अलग-अलग ध्यान केंद्रित करने से समझा नहीं जा सकता। प्रकृति में पृथक अवयवों का अस्तित्व नहीं होता, बल्कि सभी अवयव आपसी सामंजस्य के साथ रहते हैं। मिट्टी में जैविक पदार्थ प्राकृतिक उर्वरक का कार्य करते हैं तथा मृदा में जीवन तथा फसलोत्पादन में सहयोग करते हैं। जैविक पदार्थ मृदा की उत्पादकता का आधार है। फसलों की उन्नतशील प्रजातियों को काफी अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि फसलों की उन्नतशील प्रजातियां मृदा के अनुकूल नहीं है, परंतु इन अधिक मात्रा में प्रयोग किए गए रासायनिक उर्वरकों से सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति ना होकर केवल नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश की ही पूर्ति होती है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी अक्सर देखी जाती है। रासायनिक उर्वरक न केवल पौधों व सूक्ष्म जीवियों को पोषित करते हैं, बल्कि मिट्टी और जीवों पर दुष्प्रभाव भी डालते हैं। इनके प्रयोग से मृदा का पीएच मान बदल सकता है। सूक्ष्म पोषक तत्व विभिन्न एंजाइमों की सक्रियता को निर्धारित करते हैं, इसलिए विभिन्न एंजाइम किसी खास पीएच मान पर ही सक्रिय होते हैं। अतः पीएच में परिवर्तन होने से इन एंजाइमों की सक्रियता भी कम हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव की बात किया जाए तो उदाहरण के तौर पर अमोनियम सल्फेट के प्रयोग से जैविक सूत्रकृमि और केंचुए भी मर जाते हैं। सुपरफॉस्फेट के प्रयोग से स्वतंत्र रूप से रहने वाले तथा नत्रजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता वाले बैक्टीरिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फसल अवशेषों का मल्च के रूप में प्रयोग करने से इनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है। वस्तुतः रासायनिक उर्वरकों का व्यवहार फसल की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं मिट्टी की कमियों की भरपाई हेतु किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो हम रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग पर कुछ हद तक रोक लगा सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ बीज उपचारित करने से मिट्टी में जैविक खादों के निरंतर प्रयोग तथा फसल चक्र अपनाने से मृदा की भौतिक एवं रासायनिक अवस्था को सुधारा जा सकता है। ऐसा करने से फसल शारीरिक रूप से बेहतर होती है तथा रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता भी कम हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों के व्यवहार से जुड़ी बातों का सार इस प्रकार कहा जा सकता है। रासायनिक उर्वरक आधुनिक कृषि के लिए आवश्यक हैं। इनके व्यवहार के बिना भारत की 125 करोड़ की जनसंख्या का पोषण करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनके व्यवहार का सही लाभ मिट्टी की जांच पर आधारित अनुशंसा के अनुसार प्रयोग करने पर ही मिल सकता है। रासायनिक उर्वरकों के व्यवहार से मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। पौधों के संतुलित पोषण हेतु सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित सभी आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खादों के प्रयोग तथा उचित फसल चक्र अपनाने से टिकाऊ फसल उत्पादन किया जा सकता है तथा मृदा का स्वास्थ्य भी बेहतर बनाया जा सकता है।
1: मां बनना एक
2: जी, जी बहुत अच्छी जानकारी मिली अनु भाई। रासायनिक खाद का प्रयोग तो बहुतायत किसान करते हैं,
3: बिल्कुल,
2: और देखते हैं कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति थोड़ी कम हो ही जाती है
3: जी,
2: और इसलिए तो अब जैविक खाद पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है
3: जी।
2: हमारे किसान भाई जैविक खाद तैयार करते हैं और अपने खेतों में बहुतायत में चाहते हैं कि इसका प्रयोग करें ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहे
3: जी।
2: और मिट्टी की उर्वरा शक्ति अगर बरकरार रहेगी तो हमारी कई पीढ़ियां उस खेत का लाभ सीधे ले सकती हैं
3: जी। और जैविक खेती अगर हम लोग करते हैं किसान भाइयों के साथ तो पन्नू भाई उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमें देखने को नहीं मिलती है
2: जी, जी, जी।
3: और ज्यादातर हम यह भी देखते हैं कि चूंकि भी मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है तो हमारे किसान भाई जो हैं इस समय बागवानी के भी खेती कर रहे हैं तो आम के बागानों में कीट प्रकोप के नियमित निगरानी करने की सलाह इस समय हम दे सकते हैं। यदि रेड ब्लेंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत उसे जो है 2 मिलीग्राम इमिडाक्लोटिन बेंजोएट का घोल मिलाकर जो है उस पर छिड़काव करेंगे तो जितने भी प्रकार के कीड़े हैं वे आम के बागानों से हट जाएंगे
2: जी, जी, जी।
3: तो वो ज्यादा कारगर रहेगा। और बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने के लिए भी इस समय सलाह यह है कि अगर पर्याप्त रूप से नमी है तभी जो है आप अपने बागानों में जो है किसी भी प्रकार का छिड़काव करें तो वो ज्यादा कारगर होगा। लीची की तुड़ाई फलों में परिपक्वता के आधार पर करने की सलाह दी जाती है
2: जी, जी।
3: शाही किस्म में भी जो है तुड़ाई निकट होने के कारण किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह ज्यादा कारगर रहेगा
2: जी जी जी। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बागवानी तो बहुत सतर्कता का चीज होता है। अब जब फल पकने लगता है उसमें अगर छिड़काव करते हैं तो वहां भी दिक्कत होती है,
3: बिल्कुल।
2: इसीलिए किसान भाइयों को जो सलाह दी जाती है उसका वो जरूर अनुसरण करें। तो आज का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। सबको पन्नू का नमस्कार
3: और सबको अन्नू का भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। घड़ी में दिन के 7 बजने वाले हैं, संध्या के 7 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: पाते हैं। हाँ, जो अगले महीने से
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
0: सुनेंगे तो चर्चा।
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, देश में संविधान और पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कराए जाते हैं चुनाव। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं के सम्मान पर दिया जोर। कहा, जिन जिलों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं, वहां उसे अनिवार्य करना गलत। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी पहली जून से कर सकेंगे आवेदन। सीबीएसई का रिजल्ट के बाद प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल पहली जून से होगा शुरू। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और धनबाद सहित राज्य के 11 जिलों में कल बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की जताई आशंका। लोगों से सतर्क रहने की अपील। और झारखंड प्रीमियर लीग के लिए जमशेदपुर में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी। आईपीएल की तर्ज पर 10 जून से रांची में खेले जाएंगे 28 मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन

0: आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य के कई जिलों में भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। आज धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं है, वहां उसे अनिवार्य करना तर्कसंगत नहीं है।
1: हर भाषा का सम्मान करते हैं तो जनजातीय भाषा वो सब कुछ स्वीकार है, लेकिन जिस जिले में मगधी और भोजपुरी बोली जाती है वहाँ जनजातीय भाषा को अनिवार्य करना ये तर्कपूर्ण बात नहीं है। तो ये नियमावली में हम इतना ही सुधार चाहते हैं कि ये जो आपने अनिवार्यता लागू कर दी है, जिस जिले में उस भाषा की पढ़ाई नहीं होती है, टीचर नहीं है, तो वहाँ इसे लागू किया जाना तो वहाँ के बच्चों का जो भविष्य खराब हो जाएगा। हम लोग की मांग यही
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की गई। धनबाद में आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से एक दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सहायक नियोजन पदाधिकारी पद्मा कुमारी ने बताया कि रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
2: सभी सेक्टर की कंपनी है जिसमें L&T है, होंडा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, रिलायबल इंडस्ट्रीज है, इस तरह की कंपनीज है और इसमें मुख्य रूप से ITI ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए है। झारखंड के और खासकर धनबाद की भी कंपनियां हैं और साथ साथ बाहर की भी कंपनियां हैं। तो युवाओं से मेरा अनुरोध है कि अपने आप को रजिस्टर करें नियोजनालय में और समय समय पे होने वाले इन एक्टिविटीज का पार्ट बने।
0: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIR News Alert और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने आज नगड़ी स्थित EVM वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था, रख रखाव और तकनीकी प्रबंधन की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड मुख्यालय से आज महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चुप्पी तोड़ो, स्वस्थ रहो नामक एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिले के उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार

0: इसे हरी झंडी दिखाई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कल रांची के नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों और नशा मुक्त समाज के निर्माण पर चर्चा की जाएगी। पलामू जिले से पुलिस ने बच्चे के गले से सोने का लॉकेट काटने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस उपाधीक्षक राजेश यादव ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि इन अपराधियों ने पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल पर बैठी बच्ची के गले से सोने का लॉकेट काट लिया था।
1: उसमें बच्चे जो मामा के जो पीछे बैठे हुए थे, लॉकेट काटने के दौरान जो है इंजर्ड हो गए थे, पीठ के साइड में थोड़ा सा इंजरी हुआ था। इलाज के दौरान पता चला कि 10 से 12 पाके लगे थे। इस चोरी का जो है उद्भेदन करते हुए

0: जो लगातार 2 से 3 दिनों से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है उसकी वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट जो है वो देखी जा रही है। तो हमारा अनुमान ये है कि आज भी जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, जिसको देखते हुए कई मेट्रोलॉजिकल सब रीजन के लिए जो है अलर्ट भी जारी किए गए हैं। हवा की गति जो है वो भी काफी तेज रह सकती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है, चेतावनी भी जारी की गई है।
1: रांची विश्वविद्यालय के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 5 मई से आयोजित 21 दिवसीय योग शिविर का आज समापन हो गया। इस अवसर पर छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष डॉ. सुदेश साहू ने योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का सशक्त साधन बताया। आईपीएल की तर्ज पर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने झारखंड प्रीमियर लीग की शुरुआत कर दी है। जमशेदपुर में आयोजित खिलाड़ियों की नीलामी में करीब 126 खिलाड़ी शामिल हुए। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने बताया कि लीग की शुरुआत 10 जून से शुरू होगी। इस दौरान 28 मैच खेले जाएंगे।
2: हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा आएं और खेले और नेशनल लेवल पर अपने टैलेंट को दिखाएं। बड़े बड़े फ्रेंचाइजी देखेंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर खेलने का मौका मिलेगा। बाहर के खिलाड़ी को, किसी भी राज्य का खिलाड़ी को हम लोग अलाउ नहीं करें, ये हमारे लोकल बच्चे के लिए है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, देश में संविधान और पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कराए जाते हैं चुनाव। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भोजपुरी, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं के सम्मान पर दिया जोर, कहा जिन जिलों में जनजातीय भाषा बोलने वाले नहीं वहाँ उसे अनिवार्य करना गलत। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी 1 जून से कर सकेंगे आवेदन। CBSE का रिजल्ट्स के बाद प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए नया पोर्टल 1 जून से होगा शुरू। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और धनबाद सहित राज्य के 11 जिलों में कल बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की जताई आशंका, लोगों से सतर्क रहने की अपील। और झारखंड प्रीमियर लीग के लिए जमशेदपुर में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी। आईपीएल की तर्ज पर 10 जून से रांची में खेले जाएंगे 28 मुकाबले। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम। आज लोकगीत कार्यक्रम के कलाकार हैं केदार प्रसाद कुशवाहा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इनके गाए देवी गीत से।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं केदार प्रसाद कुशवाहा। इनके स्वर में अब आपको हम सुनवाते हैं इनका गाया साक्षरता गीत।

इस लोक भजन के साथ ही संपन्न होता है लोकगीत कार्यक्रम। आज लोकगीत के कलाकार थे केदार प्रसाद कुशवाहा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:25 हुए हैं। आइए शामिल होते हैं अपने पटना केंद्र के प्रसारण में।

0: समावेन ई हल्की अखोरी नागेंद्र नारायण सिन्हा इनका से हमने आज बढ़िया बढ़िया गीत सुन लिए। आज अंतिम रूप से इनका धन्यवाद तो दे देवल जाए। कथा के चौपाल अतिथि कृष्ण समय भी समाप्त हो चले के चाहिए।
1: हाँ तो नमस्कार आनंद भाई।
0: नमस्कार समाभन।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव पर मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिनों की भारत यात्रा पर गया जी पहुंचे। महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नावों के सुरक्षित परिचालन को लेकर सख्त निर्देश दिए। और राज्य में आंधी बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग आज भारत की 5 दिनों के दौरे पर बिहार के ग्याजी पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के

0: राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गयाजी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मीन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। सोमवार को म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। ये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यात्रा के क्रम में राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से वार्ताओं के लिए मुंबई भी जाएंगे। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
3: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में पटना समाहरणालय भवन में आज जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति और जिला नागरिक परिषद की बैठक आयोजित की गई। श्री चौधरी ने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
4: आज पटना जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक जिसमें माननीय सांसद, माननीय विधायकों और माननीय सदस्यों द्वारा अनेक सुझाव दिए गए जो लागू करने लायक थे, हमने निर्देश दिया है और जिला पदाधिकारी ने तत्काल उसको लागू करने का आदेश भी दे दिया है और उनके बहुमूल्य सुझाव भी आए हैं।
0: पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नाव के सुरक्षित परिचालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SN की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कहा गया कि बिना निबंधन वाली नाव का परिचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।
5: नाव परिचालन को लेकर के नेक्स्ट 2 डेज में सभी अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष छोटे घाटों में और बड़े घाटों में सभी SPO और DSP सभी नाविकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया। निबंधन का अभियान चला करके निबंधन कराया जाएगा। कई जगह है क्योंकि कपड़े क्षेत्र है और जगहें ज्यादा है, कई जगहों से परिचालन की है, सब जगहों को आइडेंटिफाई करके पहले नाविकों को जागरूक करने और नियमों को समझाने के लिए निर्देश दिया गया। पर्यटन घाट के नाविकों के साथ ऑलरेडी बैठक हो चुकी है कि वहाँ से बड़ी संख्या में मक्का दियारा के लोग आते जाते हैं।
0: जिलाधिकारी ने बताया कि सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पहले गंगा नदी में नावों का परिचालन नहीं किया जाएगा। उन्होंने पटना के सभी घाटों पर पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों द्वारा

0: नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने कहा है कि विद्यार्थी किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली परामर्श हेल्पलाइन 1800-11-8004 पर संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अंतिम आदेश पारित किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना पर जा सकते हैं। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि विशेष निगरानी इकाई से प्राप्त प्रवर्तन निदेशालय के दस्तावेजों में अनुचित लाभ लेने के आरोप में निलंबित की गई है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी योगेश कुमार सागर को और इसी आरोप के आधार पर जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
4: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर समस्त पत्रकार बंधुओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निष्पक्ष, निर्भीक और जनहितकारी पत्रकारिता समाज को जागरूक तथा सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में संगठन विस्तार की सराहना की है। नव नियुक्त सभी प्रदेश पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पटना में आज बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर पदयात्रा निकाली गई। एक रिपोर्ट।
5: आज सुबह 6 बजे पटना के गांधी मैदान से आयकर गोलंबर तक पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पदयात्रा निकाली गई। इस यात्रा में लगभग 500 पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा से पहले गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई गई।
6: मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए

0: आऊंगा।
1: सभी प्रतिभागियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पर्यावरण संरक्षण के संदेश दिए और स्वच्छ तथा हरित वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
2: मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पद्मा गांव के गणेश चौक के पास NH 227 पर दो मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर किया गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज पश्चिम चंपारण जिले के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग के जिले के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
3: दिनांक 31 मई राज्य के पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
2: विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में सबसे अधिक 116.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं पूर्णिया के कस्बा में 82.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य में आंधी बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई। हालांकि सरकार ने केवल 7 लोगों की ही मौत की पुष्टि की है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि गया में 3, नवादा, पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद में 2-2 लोगों की मौत हुई है। वहीं सारण, खगड़िया, रोहतास और भागलपुर में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन हादसों पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिल रहे लाभों के लिए लाभुकों ने केंद्र सरकार का आभार जताया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में सारण जिले के कई लाभुकों ने बताया कि गरीबों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाएं उनके परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
4: मेरे मीना कुमार नाम है, छपरा जिला घर है। मेरा शौचालय मिला है, जितना गरीब का अच्छा हुआ काम मिला है। सरकार की नियमाओं आगे में बढ़े, काम अच्छा हो।
5: मेरा नाम नवीना पंडित है। सरकार के राशन कार्ड और मिला है सरकार।
2: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइन 5 दिनों की भारत यात्रा पर गया जी पहुंचे। महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नावों के सुरक्षित परिचालन को लेकर सख्त निर्देश दिए। और राज्य में आंधी बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी।
3: और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी पटना है, प्रस्तुत है जहानाबाद जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता आभाष रंजन का है और इसे पेश कर रही है हमारी संवाददाता अंशु अवस्थी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी पिछले दिनों जहानाबाद जिले के दौरे पर थे। मखदुमपुर प्रखंड की पुंदाह पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री चौधरी ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्स्थापन एवं संपोषण कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सिंचाई प्रमंडल जहानाबाद अंतर्गत विभिन्न गाँव में संचालित इस योजना के लिए सरकार ने 42.98 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। श्री चौधरी ने कहा कि इस योजना के शुभारंभ से लगभग 360 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों को कृषि कार्य में सहूलियत मिलेगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। जिले में बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। जिले में तेज आंधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अचानक बदले मौसम ने जहां एक ओर लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर तेज हवाओं के कारण जिले के कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। इधर आंधी तूफान की वजह से जिले के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले पूरा जिला भीषण गर्मी और उमस की चपेट में था। बारिश के कारण जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मौसम में आए इस बदलाव से काफी राहत मिली है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। पटना की कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल परिसर में आयोजित अंतर विद्यालय स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता 2026 में जहानाबाद जिले के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विभिन्न वर्गों में कुल 11 पदक प्राप्त कर जिले का नाम गौरवान्वित किया। जिला पदाधिकारी जहानाबाद अलंकृता पांडे ने विजेता खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों एवं प्रशिक्षक से अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में मुलाकात की। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने सभी खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी तथा भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। जहानाबाद जिले की 15 पंचायतों में आम जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए 2 जून 2026 को सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने काको प्रखंड के पंचायत सरकार भवन पिंजौरा का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों को पूर्णता पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इधर जहानाबाद नगर परिषद में स्थायी सशक्त समिति का चुनाव सम्पन्न हुआ। इस चुनाव में क्रम संख्या 1 से संजय कुमार निर्विरोध निर्वाचित हुए। इनके अलावा क्रम संख्या 2 से रेशमी देवी ने 27 मत प्राप्त कर जीत हासिल की, जबकि क्रम संख्या 3 से संजीव कुमार 22 मतों के साथ निर्वाचित घोषित किए गए। निर्वाचित होने के बाद संजय कुमार ने सभी वार्ड पार्षदों का धन्यवाद किया। उन्होंने सभी पार्षदों से अपील की कि वे पुरानी राजनीतिक बातों को भूलकर शहर के विकास के लिए मिलकर कार्य करें। मगध रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विकास वैभव ने जहानाबाद साइबर थाने में तैनात इंस्पेक्टर पंकज कुमार को निलंबित कर दिया है। जांच में गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। टेहटा थाना में दर्ज एक मामले की समीक्षा के दौरान जांच में कई गंभीर खामियां सामने आई। इसके बाद आईजी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर पंकज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है। जहानाबाद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने किया। कार्यक्रम में नए कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और संगठन की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। श्री सरावगी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 15 वर्षों में पार्टी का व्यापक विस्तार हुआ है और बड़ी संख्या में नए कार्यकर्ता संगठन से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि नए

0: सदस्यों को पार्टी के सिद्धांतों, नीतियों और कार्यप्रणाली की जानकारी देने के लिए ऐसे प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। जहानाबाद जिले में बीते दिनों बकरीद, ईद उल जोहा का त्योहार शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और भाईचारे के वातावरण में सम्पन्न हुआ। अभी आप सुन रहे थे जहानाबाद जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता आभाष रंजन का था। इसे प्रस्तुत कर रही थी हमारी संवाददाता अंशु अवस्थी।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:52 हुए हैं। प्रस्तुत है सुरलहरी कार्यक्रम। आज सुरलहरी के कलाकार हैं अभय कुमार सुमन। आइए इनसे सुनते हैं तुलसीदास रचित भजन।

0: Akashwani at 90.
1: आप सुन रहे हैं सुरलहरी कार्यक्रम। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है मीडियम वेव 205.76 मीटर। अभी आप सुन रहे थे सुरलहरी कार्यक्रम। कलाकार थे अभय कुमार सुमन। इसके साथ ही संपन्न होता है सुरलहरी कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है रजनी गंधा कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म अजनबी से।

आप सुन रहे हैं फिल्म अजनबी का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत आनंद बख्शी ने लिखे हैं, इसे संगीतबद्ध किया है

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल्ली का ठग से। गायक कलाकार है किशोर कुमार एवं आशा भोसले।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं येसुदास और हेमलता की आवाज में। फिल्म है चितचोर। गीतकार एवं संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

आप सुन रहे हैं रजनीगंधा कार्यक्रम। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया जा रहा है। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार के युगल स्वर में। गीत नक्श लयालपुरी के हैं, संगीतकार हैं खयाम और फिल्म है दिल ए नादान।

अभी आप सुन रहे हैं पड़ोसन पड़ोसन फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों ने। गीत लक्ष्मी

रजनीगंधा कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन और फिल्म है अब्दुल्ला।

0: advance into parts of Kerala and Tamil Nadu within the next 4 to 5 days. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the finals of the Singapore Open tournament. The Indian pair defeated world number one South Korea's duo Seo Seung Jae and Kim Won Ho 21-19, 21-18 in the semi-final today. In the mixed doubles, India's Dhruv Kapila and Tanisha Krasso lost to Japan's Sayaka Hobara and Yuichi Shimogami 16-21, 21-17, 13-21 in the semi-final today. In women's cricket, hosts England have set a target of 169 runs for India in the second T20 international of the three-match series in Bristol. In reply, India was 70 for 2 in 9 overs when the fourth class came in. Opting to bat first, England posted 168 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. Priya Kemp was the highest run scorer with 39 not out of just 13 deliveries. For India, Sri Charani took 3 wickets. Indian team is currently leading the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. Indian wrestlers delivered an impressive performance at the Asian Under 17 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam today, securing several medals across different weight categories. In the 73-kilogram category, Garima claimed the gold medal, defeating Mongolia's Namun Sedseg Batbol 18-6. In the 43-kilogram category, Deeksha secured gold, beating Uzbekistan's Muklisa Masharipova 6-0. In the 49-kilogram category, Nikita settled for silver after a loss against China's Yuting Yuan. And now before we end the bulletin, the headlines. D.K. Shivakumar elected leader of Congress Legislature Party in Karnataka to take oath as Chief Minister on Wednesday. Month-long Khet Bachao Abhiyan to be launched from Monday to promote balanced and judicious use of fertilizers. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani tomorrow. IMD forecast thunderstorms accompanied by hailstorms over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbh tomorrow. In badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to men's doubles final of Singapore Open. And in women's cricket, England set a target of 169 runs for India in the second T20 international in Bristol. That is all in the news at 9. Good night.
1: Ada, ye Akashvani. Khabron ke saath main Shagufta Yasmin. कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर फिर से एक माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ओले गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में वजीर आला के ओहदे से सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद विधानसभा में कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में डीके शिवकुमार को नया लीडर मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर की जानिब से पेश की गई करारदाद को अरकान असेंबली ने मंजूर कर लिया। इस तरह डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए वजीर आला होंगे। जनाब शिवकुमार को लीडर मुंतखब करने से मुतालिक करारदाद मंजूर किए जाने के बाद मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल ने सभी कांग्रेस अरकानी असेंबली को बाजाब्ता तौर पर इस फैसले से मुतला किया। बाद में नामा निगारों को जानकारी देते हुए जनाब वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि पार्टी के अरकानी असेंबली ने इत्तफाक राय से डी के शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है और वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए

0: گورنر موصوف سے ملنے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حلف برداری کی تقریب 3 جون کو ہوگی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: تناؤ سے بھرے کچھ لمحات کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ ڈی کے شیو کمار کو کانگریس قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کر دیا گیا ہے۔ گفتگوش ہونے والے وزیر اعلیٰ سدھارمیا نے ایک سطر پر مشتمل یہ قرارداد پیش کی تھی کہ قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے انتخاب کا معاملہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی پر چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اے آئی سی سی کے جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال اور رندیپ سنگھ سرجیوالا نے ودھان سودھا میں وزیر اعلیٰ کے چیمبر میں سدھارمیا کے ساتھ علیحدہ علیحدہ بات چیت کی۔ اس طرح قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں وقفے کے بعد جب یہ دوبارہ شروع ہوئی تو ڈی کے شیو کمار کو لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ اس کے بعد ریاست کے گورنر نے ڈی کے شیو کمار کو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لینے کے لیے مدعو کیا۔ ریاست کے گورنر کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ڈی کے شیو کمار اور ان کی کابینہ کے ساتھیوں کی حلف برداری کی تقریب 3 جون کو سپہر 4:05 پر ہوگی۔ بنگلورو سے سدھیندر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ کھیتوں، کسانوں اور گاؤں کو جوڑتے ہوئے کھیت بچاؤ ابھیان کو ایک جامع قومی مہم کی شکل دی جانی چاہیے۔ وزیر موصوف نے آج نئی دلی میں کھیت بچاؤ ابھیان کی تیاریوں کے سلسلے میں اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے کہا کہ مذکورہ مہم میں کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کرنے، موسم سے وابستہ چیلنجوں کے مد نظر کسانوں کو بر وقت صلاح دینے، پنچایت سطح پر سرگرم شمولیت اور متعلقہ اسکیموں کے فائدے سیدھے گاؤں تک پہنچانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: پیر کے روز سے ملک بھر میں کھیت بچاؤ ابھیان کا آغاز ہوگا اور 30 جون تک جاری رہے گا۔ اس مہم میں شامل سبھی اداروں کے ہم رابطہ کار کے طور پر کرشی وگیان کیندر کو مقرر کیا گیا ہے۔ 1600 زیادہ ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور کھاد کے زیادہ استعمال والے 100 اضلاع کے لیے کل 500 ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ مہم کے دوران کھیتوں کو بچانے اور کسانوں کو بر وقت اور صحیح رہنمائی فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ زراعت کی وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ کیمیاوی کھاد کے بے تحاشا استعمال کو کم کرنا اس مہم کا اصل مقصد ہے۔ کسانوں کو کھاد کے متوازن استعمال اور مٹی کی جانچ کی بنیاد پر دیگر زرعی سامان کو استعمال میں لانے، ماحول کے لیے سازگار کھاد، نامیاتی اور حیاتیاتی اشیاء کے استعمال کو فروغ دینے کے سلسلے میں معلومات فراہم کی جائے گی۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 134واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ عملی عوامی شکایات اور پینشن محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج نئی دلی میں مصنوعی ذہانت اے آئی پر مبنی سی پی گرامز وائس چیٹ بورڈ سمادھان ڈی ٹی کا آغاز کیا۔ اسے بھاشینی کے اشتراک سے انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایات کے محکمے نے تیار کیا ہے۔ اس چیٹ بورڈ کے توسط سے لوگ گفتگو کے ذریعے عوامی شکایات درج کرا سکیں گے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے سمادھان ڈی ٹی کو شکایات کے ازالے سے متعلق سرکار کے نظام کو سبھی کے لیے دستیاب کرانے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا۔ وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سمادھان ڈی ٹی سردست سبھی 22 شیڈیولڈ بھارتی زبانوں میں کام کرے گا اور اس میں مزید علاقائی اور مقامی زبانیں شامل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
3: سن 2014 سے پہلے کیول یہاں پر 2 لاکھ شکایتیں درج ہوتی تھی پرتی ورش، آج اس کی بڑھ کر کے سنکھیا 25 سے 30 لاکھ ہوگی۔ کارن یہ کہ وی ہیو بین پرومپٹ، وی ہیو بین فالوئنگ ٹائم لائن، وی ہیو بین ریسپونسو، اور یہ اس لیے سمبھو ہوا کہ ٹیکنالوجی کا بھرپور اور پریاپت اپیوگ کیا گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر دیا گیا۔
0: سرکار نے کپاس کی درآمد کو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے اس سال 31 اکتوبر تک کسٹمز ڈیوٹی سے عارضی طور پر مستثنا کر دیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں ٹیکسٹائلز کی وزارت نے کہا ہے کہ کپاس کے کسانوں اور کپاس سے متعلق پوری वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, MSME इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को एतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज़ होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक और IT महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में दोहम का दौरा किया, जो पायदार अहम मादनियात और जदीद साजो सामान तैयार कर रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजीज में लिथियम बैटरियाँ और मकनातीस कलीदी रोल अदा करते हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नज़रिया है कि इन्हें भारत में ही तैयार किया जाए और इसकी टेक्नोलॉजी को भी अंदरूनी मुल्क ही तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस नज़रिए से मुताबिक रखते हुए लोहम नामी एक नए स्टार्टअप ने कामयाबी के साथ ये अहम टेक्नोलॉजी तैयार की है।
4: जल्द में बैटरी बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हो, चाहे किसी भी तरह का आज की बड़ी मशीनों में, सब जगह परमानेंट मैग्नेट और लिथियम की बैटरीज का उपयोग होता है। इसका प्रोडक्शन भारत में हो और बड़ी बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। इस विजन के तहत एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउं लाइन भारत के 5 रोजा दौरे के तहत आज शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। खारजी उमूर के मरकजी वजीर मम्लिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। इससे कबल आज म्यांमार के सदर ने बिहार के गया का दौरा किया और वहाँ महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके हमराह मुख्तलिफ काबीनी गुजरा, सीनियर अहदेदारान और कारोबारी रहनुमाओं का एक आला सतही वक्त भी है। म्यांमार के सदर का ओहदा संभालने के बाद ये उनका भारत का पहला दौरा है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उनसे मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने तवील मुद्दती बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम करने के तय म्यांमार के सदर की मुस्बत सोच की सताइश की। उन्होंने कहा कि वो अमन, तरक्की और खुशहाली के खातिर शराकतदारी की पेशरफ के सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ जनाब लाइन की मीटिंग के मुंतजर हैं। म्यांमार के सदर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने के खातिर 30 रोज़ वज़ीर आज़म मोदी से बातचीत करेंगे। वो एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करेंगे। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संग मील हासिल किया गया। सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि एक मरबूत मुश्तरक तरीक़ाकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में ये एक अहम पेशरफ है। वजारत ने कहा कि 2021 में 14 करोड़ से ज़्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई के जराइम पेशा ग्रोह के नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मुलजिमों को दिल्ली में अहम तनसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों के कब्जे से हथियार और धमाका खेज मादा जब्त किया गया है। जनाब शुक्ला ने बताया कि ये मुलजिम सरहद पार अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र और पुणे से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। अगले 2 दिन के दौरान ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल और मध्य प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ खत्ते में कल आंधी और ज्वालाबारी के साथ बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले खत्ते में भी कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। केरलम में मानसून से पहले की बारिश के तनाजुर में भारतीय मौसमियात महकमे ने तिरुवनंतपुरम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है, कई इलाकों से पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक में खलल पड़ने की इत्तला मिली है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा बिना रुकावट सफर के तजुर्बात को यकीनी बनाने के लिए डिजी यात्रा टीम को मुबारकबाद दी। जनाब नायडू ने कहा कि इस संग मील से बिना रुकावट, पेपर के बगैर और किसी खास रबते के बगैर मुसाफिरों के बढ़ते एतमाद की अक्सी होती है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों के डबल्स की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में आलमी नंबर एक जनूबी कोरिया की जोड़ी सियो सियांग जाए और किम वोन हो को 21-19, 21-18 से हरा दिया। इससे कबल ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की जोड़ी से 16-21, 21-17, 13-21 से हार गई। खवातीन क्रिकेट में 3 T20 मैचों की सीरीज के तहत ब्रिस्टल में खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड की टीम ने भारत की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इससे कबल इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इंग्लैंड ने मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डी के शिव कुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझ कर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर पीर से एक माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल जालाबारी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मार्तंड ने बोया वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आज़ादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब, इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आज़ाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आज़ाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आज़ाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की जो आज़ादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मार्तंड हो या फिर दैनिक समाचार सुदर्शन या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आज़ादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की, पूरी आज़ादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज़्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद रखना चाहूँगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं। 1974-75 का जो आंदोलन है, आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई। एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया, जहाँ कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई, वो है विकास पत्रकारिता। विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूँगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
0: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज़ जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज़ जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे। उन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाज़ें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविज़न कब देखा था कि मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज़ में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया, और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
0: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रैवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाए तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील और उनके रास्तों की बात जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
3: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
4: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहाँ पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहाँ पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
5: और अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जिसलिए आसानी से श्वेता ने ये कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
6: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला, ये इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
5: अच्छा।
6: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कंटेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रैवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। ही वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रैवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हज़ार रुपये थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रैवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रैवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
5: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहाँ पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए? और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है, पॉलिटिकल है, ये जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहाँ पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
6: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीज़ें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज़ को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से, लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
5: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी, तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं?
4: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
5: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा? कैन यू गिव सम एग्जांपल?
4: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
3: सर, तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
4: लोफर गामिनी।
3: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या?
4: इंस्पिरेशन एक तो देखो हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड जैसे इंग्लिश वर्ड जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती, तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
6: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था, हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ा, तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी, आपने पूरा इंडिया घूमा, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
4: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और पता है ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है,
5: मतलब जो जैसे भी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
4: बहुत ही मजेदार होता है। हाँ,
5: तो एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती हैं लाइक ट्राइपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
6: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसकी आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक, आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है, तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमरा खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है, तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
5: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड
6: या ऐसे जितना छोटा हो सके, मतलब
4: कॉम्पैक्ट रखो।
6: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
5: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
4: मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो उस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना उसमें जो आइसक्रीम खाई थी तो बहुत मजा आया था, और जो बच्चे तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
6: आपके पास जो है जैसा है वहाँ से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत की।
0: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है, वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, न उम्र की, न दूरी की, न परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
7: जी धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी अब समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
7: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, वाली जिस पर रोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
0: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
7: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहाँ पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है, खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है, तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं, उस पे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कंपोनेंट है।
0: जी,
7: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं, तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी है। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड।
0: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से,
7: जी,
0: वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह से रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, अगर इग्नू की बात करें?
7: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है, आप तो विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है, 10+2 आपने किया हो, ज़्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीज़ें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज़ और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मुकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मुकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मुकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मुकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन की नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियाँ न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
0: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही है राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग विद अ द्रुत कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक मानो ना ही तुमरी बात। अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज गांधार राजहंस एंड ऑन द हारमोनियम इज प्रमोद बोरगांवकर।

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री, त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना की बोल है साजन बिन सुनी पीरी आली, और द्रुत एक ताल में निबद्ध बंदिश की बोल है राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्यलय कंपोजिशन सेक टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेक टू एक ताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकम्पनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राजहंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।